हम सुन रहे हैं 90.0 मेगा आर्ट्स रेडियो वितस्ता अंबाले का अपना रेडियो सुन दे रहो अपने पसंद के गाने।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। हमने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर घर घर की आवाज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो।

0: ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਤੁਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਰੇਡੀਓ ਵਿਤਸਤਾ ਅਮ ਸਫ਼ਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾ। ਮੈਂ ਹੂੰ ਥਾਰੇ ਸਾਥ ਥਾਰੀ ਰੇਡੀਓ ਸਖੀ ਨੇਹਾ ਦਾਕੜ ਔਰ ਥਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੂੰ ਹੂੰ 90.0 ਮੈਗਾਹਰਟਜ਼ ਕੇ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਮਾ। ਮਾਰਾ ਆਜ ਕਾ ਕਾਰਿਆਕ੍ਰਮ ਆ ਆਓ ਗਾਓ ਚਲੇ। ਆਜ ਹਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਰਾਜਾਪੁਰ ਖੇਲਣ ਗਾਂਵ ਮਾ, ਜਹਾਂ ਆਜ ਹਮ ਸਰਪੰਚ ਤੇ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੋ ਰਾਮ ਰਾਮ ਸਰਪੰਚ ਜੀ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਮਾ ਬਤਾਓ ਥੋੜਾ ਸਾ।
1: ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਰਾਜਾਪੁਰ ਔਰ ਨਾਮ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਤਹਿਸੀਲ ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਹੈ। ਔਰ ਖੇਲਣ ਦੋ ਗਾਂਵ ਇਕੱਠੇ ਆਏ 1983 ਮੈਂ। ਸਰਗੀ ਸ਼੍ਰੀ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਾਪੁਰ ਕੀ ਪੰਚਾਇਤ ਅਲੱਗ ਕਰਾ ਦੀ ਔਰ ਜਬ ਸੇ ਹਮਾਰੀ ਔਰ ਖੇਲਣ ਕੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਟਰਨ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ, 3-1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤਮਾਈ ਗਾਂਵ ਹੈ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਨੇਚਰ ਕੇ ਹੈ ਸਭੀ। ਔਰ ਇਹ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੜਤਾ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਕਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਲਾ ਲਓ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਕੋਈ 8-1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੜੇਗਾ। ਔਰ ਪੜਤਾ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ। ਬਸ ਯਹੀ ਹੈ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਪਹਿਚਾਣ ਤੋ ਇਤਨੀ ਕੀ ਹੈ।
0: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਆਪਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਕੈਂਟ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਯਾ ਆਪਕਾ ਡਾਕਖਾਨਾ, ਤੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਯਾ ਹਰਿਆਣੇ ਮਾਂ? ਮੈਂ
1: ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹਮਾਰਾ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਤੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਹੈ, ਖਾਏ ਕਮਾਏਂਗੇ ਤੋ ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤਹਿਸੀਲ ਪੜਤੀ ਹੈ ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਯਹਾਂ ਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜੋ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪੜ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਿਸ ਸਭੀ ਗਾਂਵ ਵਾਲੇ, ਏਕ ਮੇਰਾ ਹੀ ਗਾਂਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੋਧਪੁਰ ਹੈ, ਮਾਲਣ ਹੈ, ਅੰਟਾਲਾ, ਸਾਰੰਗਪੁਰ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਗਾਂਵ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਸਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਗਾ ਤਾਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਧਰ ਪੜ ਜਾ ਮੈਨੂੰ 8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਹੀ 5-6 ਗਾਂਵ ਕੋ ਇਸ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਕੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਕਿ ਹਮਾਰਾ ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਹਮ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਾਥ ਟੱਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹਮਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹਮਾਰੀ ਜੀਨਸ ਹੈ ਜਾਂ ਸੌਦਾ ਪੱਤਾ ਘਰ ਕਾ ਖਰੀਦਣਾ ਤੋ ਹਰਿਆਣੇ ਸੇ ਖਰੀਦਣਾ, ਹਮਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਹਮਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਮੇਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕੇ ਲੀਏ ਅਲੱਗ ਸੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਾਲਣਾ ਪੜੇਗਾ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਜਿਸ ਪੇ ਵਹੀਕਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਔਰ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਵਹੀਕਲ ਕਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਯਹਾਂ ਜੋ 1 ਘੰਟੇ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਵਹਾਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗਤਾ ਹੈ। ਹਮਾਰੀ ਇਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਸੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਅਭੀ ਹਮਾਰੀ ਸਾਰੇ 5-6 ਚੁਣ ਸੇ 10 ਗਾਂਵ ਪੜਤੇ ਹੈ, ਅਭੀ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਮੈਂ ਆਏ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਜੀਵਨ ਔਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਸੇ ਬਸ ਇਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਯਹਾਂ ਸੇ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪੜਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਕੇ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਕਿਤਨੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਿਆ ਦਿੱਕਤਾਂ ਕਾ ਕਿਆ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੜਾ?
1: ਹਮਾਰੇ ਗਾਂਵ ਮੇਂ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ।
0: ਜੈਸੇ ਘਰਾਂ ਮਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੇ ਹੀ ਹੋਵਾਂ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਂਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੋਵਾਂ, ਤੋ ਬੱਸ ਕੀ ਸਰਵਿਸ ਜਾਂ ਆਟੋ ਵਗੈਰਾ ਹੋਵਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੋ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕਾ ਗਾਂਵ ਪੜਾ, ਤੋ ਅੰਬਾਲੇ ਕੈਂਟ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਵਗੈਰਾ ਜਹਾਂ ਵੀ ਵਹਾਂ ਜਾਣੇ ਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਵਿਧਾ?
1: ਸੁਵਿਧਾ ਤੋ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪੜਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਰੀ ਵਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਟੋ ਕੀ 1 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, 1.5 ਘੰਟਾ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੜੇਗੀ, ਜਦ ਉਸਮੇ ਸਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਤਬ ਚੱਲੇਗਾ ਆਟੋ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਮੇਂ ਤੋ ਕੋਈ ਬੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗ ਵੀ ਹਮ ਚਲੇ ਜਾਂ ਵਹਾਂ ਤੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਏਗਾ 1,500-2,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
0: ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਮਾਰਾ ਗਾਂਵ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ, ਜਬਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਰਿਆਣੇ ਕੇ ਪਾਸ ਆ, ਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਆ ਔਰ ਆਪਕਾ ਡਾਕਖਾਨਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਕੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ?
1: ਪੰਜਾਬ ਮਾਂ ਪੜਾ।
0: ਤੋ ਆਪਕੀ ਤਹਿਸੀਲ ਕੌਣ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ?
1: ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਜੀ।
0: ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਪਕੀ?
1: ਮੋਹਾਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਪੜ ਜਾ ਲਗਭਗ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ 55 ਕਿਲੋਮੀਟਰ।
0: ਤੋ ਆਪਕੇ ਵਾਸਤਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਥੋੜਾ ਆਪ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂ?
1: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੋ ਫਿਲਹਾਲ ਤੋ ਕੋਈ ट्रांसपोर्ट की तो कोई सुविधा नहीं है जी, बहुत ही दिक्कत है। पहली बात तो हमारे बच्चे इधर पढ़ने वास्ते जाते नहीं है तकरीबन, क्योंकि स्कूल जा जो वो भी 30 किलोमीटर से पहला नहीं पढ़ रहा कोई भी, और जो मान ले सरकारी काम है उसमें मजबूरी में जाना ही पड़ा, कोई अपने घर आते 2,000 रुपये खर्च कर जाओ, 2,500 खर्चो जो मर्जी करो, और कोई पंजाब सरकार ने ऐसी कोई सुविधा नहीं। सुविधा जो बुढ़ापा पेंशना उनमें बीमारी के लोग एक किस्म से भेदभाव हो रहा, हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन 2,700 रुपये होगी, यहाँ जी 1,500 रुपये, वो भी टाइम पर नहीं मिलती। मान ले जो भी विधवा वगैरह सारी पेंशनों में ही फर्क है, और जो अपना एग्रीकल्चर का मान लो सब्सिडी वगैरह देती है सरकार उसमें भी फर्क है, पंजाब में तो नाम मात्र ही है सब्सिडी जिम्मेदार के लिए, सरकार पंजाब में हरियाणा में बहुत फर्क है अभी।
0: तो मतलब आप लोग बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है अभी गांव पंजाब में गया, तो जिस तरह यहाँ के बच्चे हैं गांव के बच्चे जिस तरह स्कूल में तो आसपास चल यही चले जा, तो कॉलेज में पढ़ने वास्ते उन्होंने अंबाला जाना पड़ा या कहीं डेरा बसी जाना पड़ा, तो कॉलेज में जाने वास्ते उनके पास कितनी सुविधा ट्रांसपोर्ट की, बस सर्विस कितनी, ऑटो सर्विस कितनी है कॉलेज में जाने वास्ते?
1: गांव से ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं, एक सवेरे एक टाइम बस आती है हरियाणा रोडवेज की, उसमें ही कुछ बच्चे चले जाते हैं, कुछ जो रह जाते हैं वे अपने व्हीकल से जाते हैं या ऑटो से जाते हैं, और कोई साधन नहीं है। पंजाब सरकार का तो एक कोई भी नहीं, मतलब एक व्हीकल भी नहीं है कि यहाँ भी यहाँ कोई आता हो, और पंजाब में ना ही बच्चे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ से कॉलेज 35 किलोमीटर है, बच्चा नहीं चाहता कि एक कॉलेज तो पढ़ रहा 8 किलोमीटर, एक पढ़ रहा 35 किलोमीटर, वो 35 किलोमीटर क्यों जाएगा? तो तकरीबन 95% बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं अम्बाला कैंट में अपने, और हरियाणा सरकार को तो हम बोल भी नहीं सकते क्योंकि हमारा इन सेदारी तो हमारी पंजाब में है, हरियाणा को तो हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं अभी कोई ट्रांसपोर्ट मतलब 2 बजे या 1 बजे वापस गाँव के लिए भी लगा दे, जैसे सवेरे एक है तो उसमें हरियाणा के भी कई गाँव पढ़ते हैं, ये बात नहीं है। पहले हम जाके भी आए 1-2 जगह, आश्वासन दिया है चलो भाई, मतलब आम बंदा आवाज ही उठा सकता है, सरकार के साथ जबरदस्ती तो कर नहीं सकता। अब भी हमारी तो एक रिक्वेस्ट ही है सरकार से, ज़्यादातर हरियाणा सरकार से ही करते हैं हम, क्योंकि यहीं हमारा सारा लेन देन है और सारा कुछ यहीं से है। अभी हमारे बच्चों के लिए 2-3 टाइम और बस लगा दे तो थोड़ी सी इनको सुविधा हो जाएगी।
0: तो आपने जिस तरह बताया भी मानू बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, तो आप इस बारे में सरकार से क्या निवेदन करना चाहा अभी सरकार हमारी किस प्रकार से सहायता कर सका?
1: देखो हम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं, यहाँ से बॉर्डर पे हमारा गांव है, और हम तो अपनी पंजाब सरकार से भी रिक्वेस्ट ही करते हैं और हरियाणा से भी और केंद्र सरकार से भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि पंजाब सरकार ने नहीं कोई अपना ट्रांसपोर्ट का यहाँ से कोई सिस्टम कर क्या कभी कोई जिससे बच्चे स्कूल जा सका, थोड़ा सा मतलब जब बच्चे पढ़ाएंगे यदि हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा तो थोड़ा सा पंजाब सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि मेरा एरिया कहाँ तक है, और उनको उनका फर्ज भी है और हमारी मांग भी है कि ये कम से कम जहाँ तक उसका एरिया पड़ता है वहाँ तक बस या कोई मिनी बस तो ऐसा कुछ हो जाए जहाँ से जैस का बंदा आसानी से कॉलेज अपना जो भी कचहरी का काम है, और हरियाणा से भी यही प्रार्थना करते हैं हरियाणा सरकार से कि कोई मतलब 2-3 टाइम बस और लगा दे, और इस जो रूट हमारा गांव जिस रूट पे पड़ता है इस पे आगे हरियाणा के गांव भी काफ़ी हैं, उन बच्चों को भी लाभ होगा हरियाणा को भी, हमारा तो इसमें फ़ायदा है ही है हरियाणा का भी फायदा है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो डिमांड है हमारी हमारे पूरे एरिए की केंद्र सरकार से ये है कि जो ये गांव हैं जिनके 3 पासे हरियाणा लगता है, हमारी बोली भी हरियाणा की है, सारा लेन देन जो भी हमारा बैंक का ला लो या अपनी फसल का ला लो सारा कुछ हरियाणा में है, हम सिर्फ पंजाब में सरकारी काम के लिए जाते हैं। इस करका केंद्र सरकार से यही डिमांड है कि जो हमारे 5-10 गाँव जो से हरियाणा के पास पड़ रहे हैं, पास क्या है बिल्कुल अंदर बढ़ गए हरियाणा के, तो 6 गाँव तो इनको अगर हरियाणा में ले लिया जाए तो हमारा जीवन और मतलब सुखमय हो जाएगा, यही सारे गांव की भी मतलब पूरे एरिया की डिमांड है हमारी केंद्र से सरकार से अभी हमें हरियाणा के साथ लिया जाए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी, सरकार आपकी आवाज सुनागी और आपकी मदद करागी। आज हम बात करांगे गांव के जीवन के बारे में और मार आज का कार्यक्रम आओ गांव चले। तो गांव के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता आज हम पहुंचे हैं गांव रजापरमा, जहां हम बात करांगे राम किशन जी ते और जिनकी उम्र हो रही 70 वर्ष। राम राम ताऊ।
2: राम राम जी।
0: और ताऊ ठीक ठाक?
2: ठीक सही।
0: तो ताऊ मैं आज तेरे यूं पूछना चाहूं भी जोन सा आज का गांव का रहन सहन है और जोन से हमारे पहला के टाइम में एक रहते उनमें कितना फर्क पड़ा?
2: हमारे टाइम में तो बेटा जब हम स्कूल में जाया करते थे साइकिल भी प्राप्त नहीं होती थी हमारे, हम पैदल जाया करते थे और यहाँ से गांव सरसेड़ी यहाँ से 5 किलोमीटर पड़ता है, हम वहाँ पर पैदल जाके स्कूल में पढ़ाई करते थे क्योंकि हमारे गांव में 5वीं तक का स्कूल था। इसके बाद हम 5वीं से 6ठी क्लास से 10वीं क्लास तक हमने कहाँ पढ़ा है? सरसेड़ी में। सरसेड़ी में 10वीं क्लास जाने के बाद उससे आगे स्कूल नहीं था, फिर हमें अंबाला कैंट पढ़ना पड़ा।
0: तो ताऊ मतलब तने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त करी हुई?
2: मैं 10+2 तक पढ़ा हूँ।
0: ठीक बात ताऊ। तो 12वीं के बाद तने फिर कॉलेज की पढ़ाई नहीं शुरू करी?
2: ना बेटे, घर में इतनी गुंजाइश नहीं थी कि मैं कॉलेज में पढ़ सकता, ये 12वीं भी बहुत मुश्किल से की है, इतनी घर में गुंजाइश नहीं थी। ये गांव बिल्कुल, यहाँ हर एक मकान कच्चे थे, पैसे की बहुत दिक्कत थी, फसलें नदी बर्बाद कर देती थी, यहाँ तो बहुत मुश्किल जीवन व्यतीत किया हमने अपने टाइम में। आज के टाइम में बहुत सहूलियत है, गांव में सड़कें भी बन गई हैं, पक्के मकान भी बन गए हैं, उस टाइम में और इस टाइम में बहुत फर्क है।
0: ठीक बात ताऊ। तो ताऊ तन्ने अपने बारे में बता दिया अभी गांव के माहौल में कितना फर्क पड़ा, तो इस माहौल के बारे में और ज्यादा जानने वास्ता हम एक और ताऊ से बात करांगे। राम राम ताऊ। तो ताऊ आपका नाम क्या, आपकी उम्र कितनी हो रही?
1: उम्र 74 साल, पूर्ण चंद मेरा नाम है।
0: ठीक बात ताऊ। तो ताऊ जिस तरह तेरी उम्र 74 साल हो रही, तो तन्ने बहुत पिछला टाइम भी देखा और जो हमारा मॉडर्न टाइम चल रहा यो भी देखा। तो ताऊ मैं तेरे यूं ही पूछना चाहूं भी तन्ने अपनी जिंदगी में कितना फर्क देखा, भी पहला तेरी जिंदगी कैसी थी और आजकल के मारे न्याणे की जिंदगी में कितना फर्क देख रहा? तो तन्नू वह टाइम अच्छा लगा था आकी वो टाइम बढ़िया लग रहा?
1: टाइम तो वह भी अच्छा, ये हुई अच्छा, थोड़ा हर चीज तो मिल जा, पहले तो कोई सामान इतना मिला था, कोई बहुत दिक्कत थी, मतलब रेते में जाना, रेते में आना, पानी में चलना सारा दिन, वही बताऊँ और क्या, इतना ज्यादा कुछ हुआ नहीं था।
0: ठीक बात आऊ। तो रहन सहन के बारे में थोड़ा सा बताओ अगर श्रोता नु भी, तो खाने पीने का किस तरह बदल गया, हमारा पहनावा कितना बदल गया, अरीब कितनी टेक्नोलॉजी आएगी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
1: बहुत ज्यादा ही बद गई, तो बेटे पहला कहाँ कपड़ा भी नहीं इतना मिला था, क्या एक कुर्ता तो थी मिल गई, एक 6 महीने वही आदमी पहन रहा, पैर में जूती नहीं मिला थी, कहीं जहाँ देता तेरे भर के भाई किसी की मांग का जाना, ये काम हुआ बेटे यहाँ से पैदल जाना सीधा बेब्याल को, ये हाल थे, कोई सवारी का साधन नहीं था, कोई नई बात है और कुछ नहीं बेटे, जो पढ़ाई लिखाई है बताई है वही है बस।
0: तब पहला यातायात के साधन बहुत कम हुआ थे और बुजुर्ग नु जो से हमारे पहले बंदे थे उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा था।
1: यहाँ यहाँ बैठे यहाँ तो पानी की टक्कर लगती नदी की, ऐसे पानी फैलता था इसके गांव के चारों चिगिरता, ये सरसेड़ी परसेड़ी ये सब इधर अंटाड़ा सब में पानी घूमता था, फसलें सब नष्ट हो जाती थी, खाने में कोई बहुत बहुत दिक्कत आती।
0: राम किशन ताऊ जी आपसे पूछना चाहूँ भी जोन सा आपका गाँव आ रजा पर इसमें क्या खास बात अभी और गाँव से अलग?
2: ऐसा जी, गाँव रजापुर जो है बिल्कुल छोटा सा गाँव है, बहुत अच्छे आदमी इसमें, कोई चोरी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं, ये शरीफों का गांव है।
0: ठीक बात। तो मतलब थारा गांव शरीफा के गांव के नाम पे बजा?
2: बिल्कुल, रजापुर है ये, यहाँ पर पहले दो आदमी होते थे, एक राजू एक खेलू, राजू ने रजापुर बसाई और खेलू ने खेलन बसाई है, गांव दोनों एक ही हैं।
0: तो इस गांव का यो नाम इस कर का पड़ा था, राजू के नाम से पड़ा था। तो ताऊ मैं तेरते और न्यू पूछना चाहूँ जोन सा यो थारा गाँव आ रजा पर यो पंजाब मावा और हरियाणा थारते 7-8 किलोमीटर दूर आ, तो इसके पीछे क्या कारण रहा भी यो पंजाब में लिया गया?
2: ये तो बेटे हमारी सोधी से पहले की बात है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है, कागजों में पंजाब में शुरू से है ये गाँव, ये तो बुजुर्ग जानते होने, लेकिन हमें हरियाणा में जितना फायदा है पंजाब से हमें कोई भी बेनिफिट नहीं है। हरियाणा में हम जाएंगे, पढ़ाई हमारी हरियाणा में, नौकरी हमारी हरियाणा में, ना है यहाँ पर बसें मिलेगी कोई, पैदल जाएंगे और टेम्पो में जाएंगे या कोई साइकिल पे जाएगा या थ्री व्हीलर में जाएगा, थ्री व्हीलर में बैठेगा 1.5 घंटा इंतजार करने, पड़ेगी, जब तक उसकी सवारी पूरी नहीं होगी तब तक टेम्पो नहीं चलेगा। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई भी बस नहीं है। एक नारायणगढ़ से दिल्ली के लिए बस जाती है सुबह के टाइम 7 बजे, वो भी हरियाणा की है, लेकिन पंजाब की यहाँ पर कोई लोकल बस नहीं है, कोई सरकारी बस नहीं है। पंजाब से हमें कोई भी इतना बेनिफिट नहीं है। यहाँ से इस गांव से कम 1000 बच्चा अंबाला कैंट ड्यूटी पे जाता है प्राइवेट फैक्ट्रियों में काम करने के लिए। पंजाब सरकार की तरफ से यहाँ कोई सहूलियत नहीं, ना हमारे को कोई नौकरी देता है पंजाब में, ना हमें कोई उनकी सहूलियत है। हरियाणा में ज्यादा हमारे बच्चे हरियाणा में ज्यादा नौकरी कर रहे हैं जबकि पंजाब में नहीं कर रहे।
0: ठीक बात हो, तो मतलब सारे काम हरियाणा में ही है, कॉलेज ले लो, स्कूल ले लो,
2: हमारे काम हरियाणा के अंदर ही मिलेंगे। पंजाब में तो ये नाम मात्र के हैं, हम नाम है कि हम पंजाब में रहते हैं।
0: ठीक बात हो, तो मैं आपसे थोड़ा सा इस बारे में जानना चाहूंगी भी जोन सी हमारी पंचायत हो आ, इसके जोन से पहला के फैसले हो कराते और जोन से इब पंचायत चल रही इसके फैसले, इनमें कितना फर्क पड़ा इसके बारे में थोड़ा सा बताओ।
2: पहले जो पंचायतें थी हमारी, तकरीबन ज्यादातर किसी की लड़ाई होगी झगड़ा हो गया फैसला यहीं हो जाता। ये डॉक्टर धर्म सिंह के टाइम की बात है, उस टाइम यहाँ के सरपंच थे राजा पर। लेकिन आज के टाइम में हरेक आदमी के अंदर आग इतनी बढ़ गई है कि वो हरेक आदमी थाने की तरफ भागता है। तो अब तो थाने में जाना पड़ेगा और थाना पड़ेगा यहाँ से दूर। पहले लारडू थाना था हमारा, अब हंडेसरे में पड़ता है। तो पहले में अरब में तो बहुत फर्क है। पहले 4 आदमी इकट्ठे होके पंचायत के आपस में यहीं पर फैसला कर देते थे। आजकल कोई किसी की मानता नहीं, सीधा थोड़ी सी बात हो जाए किसी से लड़ाई हो जाए सीधा सरपंच को भी नहीं पूछेगा, वो पहले थाने में पहुंचेगा। आज का टाइम ये है।
0: तो तन्नु अपना वही टाइम पसंद आक तन यो टाइम ठीक लगा?
2: बेटे हमारा टाइम तो वो भी ठीक था, लेकिन आज के जनरेशन के हिसाब से टाइम ये भी ठीक है, क्योंकि उस टाइम में इतनी सहूलतें नहीं थी जितनी सहूलतें अब हो रही है। हम तो बरसात का टाइम आता था कोठे पे गारा लगाने के लिए परेशान हो जाते थे, किसी का कोला गिरता था, कच्ची छतें थी, डंडे डार रखे थे छतों पे, कड़िए के मकान थे। और आज एक भी मकान ऐसा नहीं मिलेगा जिसका कच्चा है, हरेक का मकान पक्का मिलेगा, हरेक के घर में फर्श मिलेगा। हाँ उस टाइम में ये था, कोई गरीब आदमी है उसके घर में दूध नहीं है, पड़ोसी से मिल जाता था। अब तो जिसके घर में खुद दूध है वो भी दूध नहीं पी सकता, वो डोलू वाला ले जाता है। तो टाइम तो वो भी अच्छा था, जनरेशन के हिसाब से ये भी अच्छा है।
0: तो ताऊ तो आज के मारे जोन से युवा अपने बालक है न्याणे, उन्हें क्या कहना चाहगा भी जिस तरह गलत आदतों में भी पढ़ रहे बच्चे और अपना पढ़ाई पर भी नहीं ध्यान दे दे, तो उन्हें क्या संदेश देना चाहता हूं भी अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और किस मुकाम तक पहुंचना चाहिए?
2: बेटे हमारा टाइम ऐसा था, अगर किसी अपने बुजुर्ग के अलावा किसी और बुजुर्ग ने भी डांट दिए ना हमारे को तब भी हम बोलते नहीं थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि अपने बच्चे को हम खुद नहीं डांट सकते। पहले क्या था हमारे टाइम में, अगर पड़ोसी ने भी डांट दिया हम सीधे उनसे डर के भाग जाते थे। अब किसके बच्चे कहना मानते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ तन्ने जानकारी दी और तो आज के युवा नु संदेश दे रहा भी अपने उसी टाइम पर चलना चाहिए जिस तरह हमारे पहला टाइम था, अपना कहना मान्य कराते ताऊ चाचे का बहुत डर हो कराता उस टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ एक युवा जुड़ रहे, हम युवा के साथ बात करेंगे कि युवाओं का जीवन कैसा है और वे अपनी जिंदगी किस तरह व्यतीत कर रहे। राम राम जी।
3: राम राम जी। नेहा जी पहले तो आपको थैंक्स जो आप हमारे गांव में रेडियो के माध्यम से यहां तक आए। और मेरा नाम है प्रवीण शर्मा और मैं गांव रजापुर पोस्ट ऑफिस केलन डिस्ट्रिक्ट मोहाली तहसील डेराबसी से रहने वाला हूं।
0: तो प्रवीण जी जिस तरह आप एक युवा, तो मैं आज आपसे युवाओं के बारे में ही जानना चाहूँ भी जोन से मारे युवा उनका जीवन कैसा है और उन्हें कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा।
3: देखो जी नेहा जी, ये तो अलग अलग स्टेप होते हैं, युवाओं के अनुसार उसकी कैटेगरी उसके परिवार के अनुसार वो डिप्लोप होती है। जैसे एक परिवार में पढ़े लिखे बच्चे होंगे तो 80% लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर कल्चर पहले ही बैकग्राउंड खराब है तो उसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने में समय लगेगा। और अगर मैं बात करूँ युवाओं की, हमारे गाँव में 80% युवाओं बहुत अच्छे हैं, एजुकेशन की तरफ जाते हैं। और एजुकेशन का बैकग्राउंड क्या है, हम पंजाब में एक 10वीं और 12वीं का स्कूल है, उसके बाद सारी एजुकेशन हम हरियाणा से डिप्लोव करते हैं। और एजुकेशन के बाद अगर बच्चा ग्रोथ करेगा, नौकरी पैसा जो भी लेगा वो भी 90% हरियाणा में लेंगे। या वो प्राइवेट सेक्टर हो या वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, हम 80-90% प्राइवेट में करेंगे और वो भी मैक्सिमम हरियाणा में करेंगे। उसके पीछे कारण क्या है, हमारे गांव से जो डेराबसी कॉलेज है और कोई आसपास पंजाब का कॉलेज नहीं होगा डेराबसी, जो हमारे से 35 किलोमीटर दूर है। अगर यही बात हम हरियाणा से बात करेंगे तो हमारे से 7 किलोमीटर दूर SD कॉलेज है। एक कॉलेज नहीं, 4 कॉलेज है। इवन जो मेरी, जैसे बात करूंगा, छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, माता जी, जो हमारी सिस्टर बुआ जी हैं जो पढ़ नहीं पाई, वो भी हमारे से 10 किलोमीटर कॉलेज आ रहा है, अगला कॉलेज, वहाँ स्टडी होप कर लेती वो, अगर हमें सहूलत मिलती।
0: तो मतलब आप यूं कहना चाह रहे भी पढ़ाई लिखाई मानू यातायात की सुविधा नहीं है आने

0: और जिसके कारण सुविधा बढ़ जाएगी। दूसरी बात, लोकल है तो अपने पास किसी को गाड़ी है, किसी को बाइक है, वो अपने साधन से जो मर्जी जाए, वो तो उसके पेरेंट्स के बदौलत तो बच्चे स्टडी कर रहे हैं।
1: तो आप सरकार से यूं ही कहना चाह भी मानो, शिक्षा प्राप्त करने वास्ता साधन भी मिलने चाहिए और हमारे आसपास भी कोई कॉलेज होना चाहिए।
0: राइट मैम, सारे कॉलेज हैं, SD कॉलेज है, GMN कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, आर्यागल कॉलेज है, DAV कॉलेज है, अग्रसेन कॉलेज है, 7 कॉलेज गिनवा दिए मैंने 8 किलोमीटर के अंदर, और पंजाब के अंदर एक कॉलेज है डेराबसी 35 किलोमीटर के दूर, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। अब दोबारा आओ प्राइवेट सेक्टर की बात, अगर मैं एक छोटे से परिवार से हूँ और मुझे 10-12 हज़ार रुपये की नौकरी करनी पड़ेगी, मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। यहाँ से मेरे 6 किलोमीटर दूर इंडस्ट्री एरिया है, जहाँ 400 कंपनी है, कोई गैस की, कोई लोहे की, कोई साइंस की, तो मुझे आसानी से नौकरी मिल जाएगी और मैं अपने पैदल भी जा सकता हूँ अगर घर से कमजोर हूँ, और उसके बाद 2,000 की साइकिल लेके भी जा सकता हूँ। बट पंजाब सरकार में मैं नौकरी कहाँ करूंगा, 40 किलोमीटर दूर डेराबसी से इंडस्ट्री एरिया लगता है फेस पे, ट्रिब्यून चौक पे, और यहाँ से वो 60 किलोमीटर दूर, मुझे आने जाने का बताओ कैसे करूंगा मैं।
1: तो आपकी सरकार ते क्या मांग, आप क्या गुहार लगाना चाहा सरकार नु?
0: देखो मैं तो दोनों ऑप्शन बता दिए आवाज के जरिए, आपके रेडियो के जरिए भी। पहला ऑप्शन ये, या मुझे कॉलेज के पास ले जाओ मेरे बच्चों को ताकि वो स्टडी कर लें, नहीं ले सकते मुझे ट्रांसफर कर दो ताकि मैं एजुकेशन खुद ले लूं। दोनों सरकार के पास है और केंद्र सरकार के हाथ जोड़ निवेदन करूंगा मैं कि जो ऑप्शन सही लगे वो मुझे एग्री होना चाहिए। अब थाने कचहरी की बात करूं, जैसे सरपंच साहब ने ओवरऑल कवर कर ही लिया मेरा, अगर मेरी DL या RC कोई भी चीज बनवानी पड़ेगी, मुझे डेराबसी जाना पड़ेगा जो यहाँ से 60 किलोमीटर दूर है, अगर यही चीज मुझे बनवाने के लिए ये 6 किलोमीटर दूर है, मुझे अपनी नौकरी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी और एक दिन की 400 रुपये की दिहाड़ी भी नहीं छोड़नी पड़ेगी, मैं आसानी से जा सकता हूँ लंच टाइम में भी, क्योंकि मैं तो जॉब फैक्ट्री में कर रहा हूँ ना, कंपनी में एक छोटी सी जॉब, तो लंच टाइम का पीरियड होता है 1 घंटे का, 1 घंटे के अंदर मैं कचहरी में जा सकता हूँ, बट वहाँ मुझे 400 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के जाना पड़ेगा। दोनों ऑप्शन सरकार के पास है देखो, और हम यहाँ बैठे हैं और आवाज केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार ऑलमोस्ट पहुंच चुकी होगी। अगर मुझे गांव के अंदर एक नाला बनवाना पड़ जाए, मेरी सरपंच सुनवाई ना करे, कोई सुनवाई ना करे, मुझे MLA के पास जाना पड़ेगा ना, MLA कहाँ बैठता है मेरा, चंडीगढ़ डेराबसी, वो हमने आवाज आप तक पहुंचाई थी, कुछ ना कुछ निष्कर्ष अच्छा निकले और हम आगे बढ़ने की बात करें। जो आपका पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये है भी, हम आगे जब बढ़ेंगे, जब देश हमारे साथ हमें आगे बढ़ाएगा और हमारी सरकार कोई निष्कर्ष निर्णय लेगी, हरियाणा ले या पंजाब ले, उसके बदौलत हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम यहीं सर्वाइव करेंगे, अगले 70 साल भी आप आ सकते हैं, जब मैं 70 साल कहूंगा तो आप मुझे यही क्वेश्चन करना और मैं यही आंसर दूंगा सेम जो मेरे बाबा जी ने दिया और जो सरपंच साहब ने दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी, आपने जो इतनी जानकारी दी और अपने बारे में बताया और जो उनसे देश के युवा है उनके बारे में भी, मैं किस तरह आगे बढ़ सका।
0: देखो देश तो आगे आज भी बढ़ रहा है और पहले भी बढ़ रहा था, बट हमारा गांव आगे पहले भी नहीं बढ़ रहा तो आज भी नहीं बढ़ रहा, पहले बड़ा होता तो बाबा जी बोलते बड़ा हुआ है, उसके बाद 20 साल 40 साल का गैप सरपंच साहब बोलते और मैं भी सेम बोल रहा हूँ और मेरे आने वाले बच्चे भी यही क्वेश्चन करेंगे।
1: प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने मेरे ते बताया अभी मन यो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, तो इसका हम सरकार ते यही निवेदन करना चाहेंगे भी जो आपकी दिक्कत है वह सरकार सुना और जो भी सरकार उसका फैसला लेवागी तो आपके हक में होगा वो फैसला, और जिस तरह हम यहाँ आपके गौ माए तो मारी है जो सी आने की यहाँ वजह वह सफल हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू नेहा जी, जो आपने कहा देखो सफल तो जब भी होगी जब आवाज उठाएंगे, आपका नाम ही पहले आवाज है, आवाज उठेगी तो वो कुछ ना कुछ ले ही होगी डिसीजन, और ये निष्कर्ष मेरा नहीं है, विलेज राजापुर से मैं हूँ, मेरे पास वाला गांव खिलण है और उससे पास वाला अंटाड़ा, मालण, जोधगढ़, इवन सारंगपुर, ये सारे के सारे 6-7 गाँव हैं जो हरियाणा का बिलोंग करते हैं, और ये मेरा मतलब एक मेरी तकलीफ नहीं है, 7 गाँव की सेम यही है, आपकी आवाज उठेगी, आपकी आवाज की सुनवाई होगी तो ये 7 गांव आपका एहसान मंद रहेंगे पूरी लाइफ, हम भी अगली पीढ़ी को ये बोलेंगे भी आवाज से हमारे पास आया और हमारी आवाज केंद्र सरकार को गई और उसके बाद हमारे बच्चों का फ्यूचर बन गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी।
2: आप सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी सेजल। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं पंजाब के एक गांव रजापुर में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहां के पंच और सरपंच, तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस गांव के बारे में।
3: नमस्कार जी, मैं गांव रजापुर से और राज सिंह बोल रहे हैं, सरपंच से तहसील डेरावासी जिला मोहाली।
2: सर क्या आप बता सकते हैं कि आपके गांव में अगर हम कृषि की बात करें तो इस समय कौन सी फसलें लग रही हैं और क्या कृषि के लिए तैयारी हो रही है?
3: मेरे गांव में जीरिया लगी हुई है अभी और चरी बाजरा है जो भैंसों के लिए,

0: गन्ना है, बस मुख्य फसलें यही हैं ज़्यादा।
1: और जैसे फसलों के लिए पानी सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तो पानी की क्या सुविधाएं हैं आपके गांव में से?
0: गांव में किसानों ने अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने वेल लगा रखे हैं, और एक सरकारी बोर है, वो भी बिना देख रेख के ही चल रहा है रबर उससे। बाकी कोई नहरी पानी नहीं है, जैसे पंजाब एक खुशहाल प्रदेश है, यहाँ से कोई नहरी पानी का कोई कभी देखे ही नहीं, किसी ने कभी नहरी पानी का होता है। और हमारे साथ तो यहाँ से बहुत ही सरकारों ने पहले से वो कह देते सौतेला व्यवहार कर रखा। जब इलेक्शन का टाइम आता है तब तो उनसे जो मर्जी को हाल हो, नहर भी आ जाएगी, सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद सब भूल भाल जाते हैं।
1: जैसे अभी बारिश के मौसम में काफी सारे गांव बारिश की वजह से प्रभावित हुए थे, तो उस बारिश की वजह से कहीं ना कहीं आपके गांव को कोई दिक्कत आई?
0: बारिश में बहुत ज़्यादा दिक्कत आई है, गांव में पानी भी बढ़ा है, और डांगरी नदी ने भी बहुत मतलब जो उपजाऊ जमीन थी उसका बहुत नुकसान कराया है। तकरीबन 40-50 साल बाद इतना पानी देखने को मिल रहा है, जो बुजुर्ग बोल रहे हैं, इससे पहले तो कभी इतना पानी आया नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, चाहे इसको बात नो चाहे आप काट भी दियो, मतलब कोई वो नहीं है, जो सच है तो सच है। इब की बार इस बरसात में जो अपना महेशनगर का पुल है उसने डुबोने का काम कराया है, जो अपना सरसेड़ी में पानी बढ़िया वो पुल के कारण बढ़िया है। आप मतलब सरकार को ये थोड़ा देखना चाहिए उसके, मैंने उसके नीचे जाके खुद देखा है, उसके 8 पिलर हैं, मतलब 8 दरवाजे ला लो आप, उन 8ों में से 4 बंद है, और 4ों में का पानी निकलता है और 4 बंद है, तो पानी तो कहीं ना कहीं रास्ता चाहेगा। वहाँ पानी पूरा ना निकलने के कारण जो सुसेड़ी में पानी बढ़े है वो तो सारा वहाँ की नाकामी भी है, वहाँ से निकासी बंद हो ही है, वो सरकार का काम है देखना कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो ये मेरी मतलब आवाज़ ना काटा तो आप बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि किसी ने ये मुद्दा उठाया ही नहीं है। पूरी हमारी टेंट की अंबाड़े की इंडस्ट्री डूबी है इसी के कारण। 20-25 गाँव जो डांगरी का तकरीबन 3 इंच से पानी इधर से गया, 1 इंच से पानी इधर गया।
1: तो इस वजह से गांव के कितनी प्रतिशत जमीन और फसलें प्रभावित हुई?
0: मेरे गांव में तकरीबन तकरीबन 30% फसलों का नुकसान हुआ है, और तकरीबन 15% जमीन खराब हुई है जो खेती के लायक रही ही नहीं है।
1: तो जैसे कि आपने अपनी सारी समस्याओं के बारे में बताया, तो इसके बाद आपको सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिला या सरकार की तरफ से कोई सुविधा प्राप्त करवाई गई है आपको?
0: नहीं, अभी तो कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं कराई गई है। पहले भी जो अपनी कणक की फसल में बरसात हुई थी तब भी सरकार ने फार्म वगैरह भरवाए थे, कोई मुआवजा नहीं दिया, और अब फिर सरकार ने फार्म भरवा रखे हैं जिसका नुकसान हुआ है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है, आगे देखो सरकार क्या करती है।
1: अब हम बात करते हैं इस गांव से जुड़े स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में। तो पहले हम यहाँ के पंच से पूछना चाहेंगे कि इस गांव में क्या-क्या स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं उन्हें मिलती हैं।
2: नमस्कार जी, मेरा नाम हरप्रीत सिंह है, मैं यहाँ का पंच हूँ जी। यहाँ पर कोई भी स्वास्थ्य सुविधा कोई नहीं है जी। यहाँ सिर्फ यहाँ से पहले भी जिस सरपंच साहब कह चुके हैं, यहाँ से सरकारी अस्पताल डेराबस ही पड़ता है जी, 40 किलोमीटर, और हमारी तो सारी आबादी यहाँ की गाँव की सिविल हॉस्पिटल पर ही डिपेंड करती है जी। यहाँ कोई सुविधा नहीं है जी, यहाँ सिर्फ हरियाणा पर ही डिपेंड है जी।
1: इस बारे में सरपंच जी आपके क्या विचार हैं?
0: जो हमारी सरकारें हैं, चाहे वो सेंटर सरकार है, चाहे पंजाब सरकार है, चाहे हरियाणा सरकार है, सारी इसमें सौतेला व्यवहार कर रही है। एक तरफ तो सरकारें बोलती हैं कि एक देश कैसे हुआ, ये आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, मतलब सेंटर सरकार की स्कीम है, बोल रही है कि कहीं भी इलाज कराओ, और हम पंजाब में हैं, हमारे से नज़दीक पड़ता है हरियाणा का हॉस्पिटल, हम वहाँ जाते हैं, हमारा आयुष्मान कार्ड नहीं चलता वहाँ पे, तो हम कहाँ जाए करके बहुत मुश्किलें। और पंजाब सरकार आई है कि मतलब दिल्ली का मॉडल लेके आई थी कि यहाँ भी मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हमारे यहाँ से 10-15 किलोमीटर से इधर से कोई अब तक खुलिया नहीं है, मतलब लालडू अपना हॉस्पिटल एक एक छोटा सा यहाँ पे अंटाला में है, अंटाला भी 3-4 किलोमीटर है, वहाँ पूरे डॉक्टर नहीं अब तक है, कोई मरीज मतलब जाएगा तो उसको पूरी दवाई नहीं मिलेगी, फिर उसको हरियाणा में आना पड़ेगा, वो क्यों जाएगा वहाँ से उल्टे पास से,
1: तो आप हमारे रेडियो के माध्यम से दोनों सरकारों को और केंद्र तक क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं?
0: मैं तो ये संदेश, क्या हमारी तो प्रार्थना है सरकारों से, अभी गरीब माल ना करे। अमीर तो अपना इलाज करा लेगा, पैसे दे के कहीं भी करा लेगा, गरीब कहाँ जाएगा? जिसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है वो तो अपने घर बैठा बेफिक्र होगा, अभी मेरे पास तो कार्ड है और मेरा इलाज हो जाएगा। और जब हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ कुछ नहीं, वो कहाँ एट ए टाइम उस टाइम मरीज को संभाले या पैसा देखे, कहाँ क्या करेगा वो? मतलब मेरी तो यही है प्रार्थना कि जो पंजाब का आयुष्मान कार्ड है वो हरियाणा में भी चले, यूपी में भी चले, दिल्ली में भी चले, जिससे अपना बीमार आदमी अपनी दवा बुट्टी करा सके।
1: आयुष्मान कार्ड के अलावा और क्या कोई सुविधा आप चाहते हैं सरकार के द्वारा आपको दी जाए?
0: अगर जैसे हम पंजाब में हैं, लास्ट गांव है, यहाँ से कोई डिस्पेंसरी खुल जाए जिससे मतलब फर्स्ट एड मिल जाए बंदे को, थोड़ा फिर मतलब राहत मिले, आदमी फिर अपना कहीं भी इलाज करा ले। ये मतलब छोटी मोटी डिस्पेंसरी खुलना जरूरी है यहाँ पे।
1: जैसे इस वक्त हरियाणा में डेंगू के केस और पंजाब में डेंगू के केस ज्यादा देखे जा रहे हैं, तो आपके इस वक्त आपके गांव में क्या स्थिति है सर?
0: बहुत ज्यादा बुरा हाल है, मतलब 100-150 मरीज पड़े होगा हॉस्पिटल में। और मैंने एक मतलब स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फोन भी किया है, इस ऐसे ऐसे करके मेरे गांव में पड़े हैं मरीज, कोई मतलब स्प्रे करा दे या कोई दवाई का इंतजाम कर दे, कुछ भी। मतलब अब तक तो कोई जवाब नहीं आया, ना कोई पूछ सुध लेने आया कि हाँ भाई यहाँ पे क्या है क्या नहीं, वहीं बैठे रिपोर्टे दे देते हैं, सब ठीक है यहाँ पे।
1: आप इस समस्या से इस वक्त कैसे इसका समाधान निकाल रहे हैं खुद ही, और क्या क्या चीजें आपने अपनाई हैं?
0: समाधान तो कुछ नहीं है जी, यही अपना हरियाणा के हॉस्पिटलों में पड़े हैं बंदे, अपना इलाज करा रहे हैं, अपनी मतलब पैसा वेस्ट कर रहे हैं अपना।
1: तो ये थे रजापुर गांव के सरपंच, जिनसे हमने बात करी और जाना किसानी के बारे में और स्वास्थ्य के बारे में। उम्मीद करते हैं इनकी आवाज सरकार तक जरूर पहुंचेगी और जल्द से जल्द इन्हें सुविधाएं प्राप्त करवाई जाएंगी।
3: मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी, रेडियो विदस्ता 90.0 FM से, और आज हम आधिकारिक रूप से आए हैं गांव रजापुर में, जो तहसील डेरा बसी पंजाब राज्य में पड़ता है। ये गांव अंबाला कैंट, जो हरियाणा में पड़ता है, अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हमने आज गांव के अलग अलग लोगों से बात की, जो अलग अलग उम्र के हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं और युवा भी हैं, और जो लोगों से हमने बातचीत की उससे हमें एक अलग ही एक तस्वीर सामने आई कि एक गांव जो किसी राज्य के बॉर्डर पर है और दूसरे राज्य के नज़दीक है, उन लोगों की बात कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब उनको ऑफिशियली कोई काम करना पड़ता है तो उनको 35 किलोमीटर दूर या तो डेराबसी जाना पड़ता है या उनको 60 किलोमीटर दूर मोहाली जाना पड़ता है। जब ये लोग यहाँ पर अस्वस्थ होते हैं तो इनके लिए सबसे नज़दीक हरियाणा में जो अंबाला कैंट के अंदर हॉस्पिटल है वो आता है, उनको वहाँ जाना पड़ता है जो केवल 7 या 8 किलोमीटर दूर है। जहाँ तक हमने देखा कि यहाँ ट्रांसपोर्ट की बात हमने की, पंजाब सरकार की ओर से यहाँ ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है, यहाँ के लोग अपना ट्रांसपोर्ट यूज करके जो कोई इनको काम करना है, चाहे इनकी बच्चों की पढ़ाई है, चाहे इनका रहन सहन है, चाहे इनके लिए घरों के लिए सामान लाना है या जमींदारी के लिए कोई सामान लाना है, तो ये निर्भर पूरी तरह से हरियाणा राज्य के जिला अंबाला पर है। इन लोगों की बात हमने आज सुनी है, रिकॉर्ड की है। हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये बात पंजाब सरकार तक देंगे, हरियाणा सरकार तक देंगे और केंद्रीय सरकार तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक जरिया है जिस जरिए के माध्यम से हम लोगों की बात बाकी लोगों तक पहुंचाते हैं और सरकारों तक पहुंचाते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी एक जिम्मेदारी भी है। जब बुजुर्ग कहते हैं कि आज से 70 साल पहले ये गांव वैसा ही था, और एक युवा जो 30 या 35 साल का है वो भी यही कहता है कि आज भी गांव वैसा ही है, और उनका कहना है कि अगर हमारा बच्चे से कल आप पूछोगे 15 साल 20 साल के बाद वो भी यही बात कहेंगे, तो ऐसे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम सभी सरकारों से अनुरोध करते हैं कि इस गांव के बारे में सोचे, चाहे वो पंजाब सरकार हो, चाहे वो हरियाणा सरकार हो या केंद्र सरकार हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने आज हमें इतना सारा समय दिया, आप सभी लोगों का रजापुर गांव से बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और लेके आए हम आपके लिए आज के कृषि समाचार। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: मक्का की 15 जुलाई तक बिजाई करें, संकर व बायो फोर्टिफाइड किस्में अपनाएं, 4 से 5 बार करें मिट्टी की जुताई, 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज डालें। मक्का की खेती के लिए रेतीली दोमट व दोमट मिट्टी और अच्छे जल निकासी वाले खेतों का चयन करें, 4 से 5 जुताई कर 2 बार सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत में ढेले ना रहे। मक्का की बिजाई केवल ऊंचे इलाकों में ही करें जहां पानी की निकासी हो सके। मक्का फसल की बिजाई मध्य जुलाई तक पूरी कर लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि सामान्य मक्का की लंबी व मध्यम अवधि के सिफारिश शुदा एकल संकर किस्में और बायो फोर्टिफाइड मक्का की पूसा MH4, पूसा HQPS1 इम्प्रूव्ड, पूसा HQPS5 इम्प्रूव्ड, HQPS1, HQPS4 और HQPS5 संकर किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। टेम्बोट्रियम लेडियम 42 SC 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिजाई से पहले कर ले बीज उपचार। 1 एकड़ खेत के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मक्का में फॉल आर्मीवर्म फ्रा सर्वाधिक हानिकारक कीट है। फ्रा की रोकथाम के लिए क्लोरोट्रॉनरी पोल 19.8, थाइमेथो किस्म 19.8 अनुपात कीटनाशी द्वारा 6 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज के दर से शाम को बीज उपचार करें व सुबह बिजाई करें। इससे दीमक व तना छेदक की रोकथाम भी हो जाएगी। फसल की बीमारियों से बचाने के लिए थेरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बिजाई से 4 से 5 घंटे पहले उपचारित करें। बिजाई का तरीका, पूर्व पश्चिम दिशा में मेड बनाकर मेड के दक्षिण दिशा में उपचारित बीज से 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करें। बाद में आधा खुड की ऊंचाई तक पानी लगाने से जमाव ज्यादा व जल्दी होता है। बिजाई यदि न्यूमेटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड विधि का उपयोग करके की जाए तो जमाव अधिक होता है व पानी को भी 30 से 35 अनुपात की बचत रहती है। खाद व उर्वरक। ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 60 क्विंटल प्रति एकड़ खेत की तैयारी से पहले डालें। सामान्य दिशाओं में 50 किलोग्राम GAP, 40 किलोग्राम MOP व 37 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बिजाई के समय करें। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए 600 ग्राम एस्ट्रोजन 50 WP के 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1-2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे खतरनाक कीट होता है। इसका पता लगाने के लिए खेत में 5 फेरोमोन पिंजरा प्रति एकड़ के दर से बिजाई के बाद लगाएं। क्लोरोनेट्री प्रोनोल 18.5 SC 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या सैन्योटोराम SC 100 मिलीलीटर का 200 लीटर पानी में गोल बनाकर छिड़काव करें।
1: घर पर पशुओं के लिए संतुलित दाना मिश्रण तैयार करें, बढ़ेगा दूध उत्पाद। मौसम के अनुसार आहार देने से स्वस्थ रहेंगे पशु। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध और मुनाफा लेने के लिए उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक संतुलित पशु आहार कंपाउंड फीड किसानों के लिए एक सुविधाजनक किंतु अपेक्षाकृत महंगा विकल्प है। डॉक्टर सुजॉय खन्ना लुवास ने बताया कि पशुपालक आसानी से सस्ता और 100% शुद्ध संतुलित दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इससे न केवल खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि पशुओं की सेहत सुधरेगी और दूध में फैट और SNF की मात्रा भी शानदार तरीके से बढ़ेगी। सामग्री और सही अनुपात: अनाज 35 से 40 किलो, मक्का, जो गेहूं या बाजरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम के अनुसार अनाज बदल सकते हैं, जैसे गर्मियों में जौ की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में बाजरा गर्माहट देता है। खल 25 से 30 किलो, प्रोटीन की पूर्ति के लिए सरसों की खल, बिनौला, कपास या मूंगफली की खल लें। चोकर और चूनी 20 से 25 किलो, गेहूं का चोकर और चना, उड़द या मूंग की दाल की चूनी छिलका पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन होते हैं और फाइबर की कमी पूरी करते हैं। साधारण नमक 1 किलो, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और पशु की भूख बढ़ाता है। तैयार करने की सही विधि: अनाज को बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीसने के बजाय दलिया पिसवाएं। खिलाने की मात्रा और सावधानियां: एक स्वस्थ पशु को उसके शरीर के रखरखाव के लिए रोजाना 1.5 से 2 किलो दाना चाहिए। अमरूद का साइलेंट किलर है फल मक्खी, बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप है फायदेमंद। बारिश सीजन में फल के छिलके में अंडे देकर फसल खराब करती है मक्खी। अमरूद के बरसाती फल को फल मक्खी प्रभावित कर सकती है। कीटनाशक मुक्त उत्पादन के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। हाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्वावा अमरूद भूना में किसानों को जागरूक करने के लिए फल मक्खी ट्रैपों में नए लीवर लगाए गए। प्रदेश में 17,448 हेक्टेयर में अमरूद की फसल है। पिछले साल 21,228 मेट्रिक टन उत्पाद हुआ था। प्रदेश में अमरूद की खेती हिसार, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत व यमुनानगर में की जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक फल मक्खी का प्रभाव रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि फल मक्खी अमरूद, आम, पपीता, नींबू की फसलों का प्रमुख कीट है। मादा मक्खी फल के छिलके में अंडे देती है। अंडों से निकले कीड़े फल के अंदर गूदा खा जाते हैं। इससे फल सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं व बाजार में गुणवत्ता घट जाती है। इससे 30-80% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध हैं। लूअर की कीमत 35 से 100 रुपए प्रति पीस या ब्रांड के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी यह किफायती दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। 1 एकड़ में नियंत्रण के लिए 8 से 10 ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक ट्रैप लूअर किट की कीमत इससे अधिक भी हो सकती है। किसानों को उत्पादन में मिलेगा बढ़ावा। फल मक्खी की समय रखते पहचान हो जाती है। कीट की संख्या बढ़ने से पहले नियंत्रण संभव होता है। फलों का नुकसान और गिरावट कम होती है। कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटती है। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बेहतर गुणवत्ता वाले फल तैयार करने में मदद मिलती है।
0: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपका लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप कृपया हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हम उस जानकारी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।
0: नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

जॉर्ज मुखर्जी का जन्म झांसी में 24 फरवरी सन 1939 को हुआ था। अपनी पढ़ाई देहरादून में मुकम्मल की। अपना फिल्मी करियर सन 1960 में फिल्म लव इन शिमला से शुरू किया था। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी साधना। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की। जॉय मुखर्जी को रोमांटिक आइकॉन के तौर पे एक खूबसूरत पहचान मिली थी। फिल्म लव इन शिमला के बाद सन 1963 में फिल्म आई फिर वही दिल लाया हूँ, सन 1964 में जिद्दी, सन 1966 में लव इन

सन 1967 में शागिर्द और एक मुसाफिर एक हसीना। उस वक्त की टॉप हीरोइनों में आशा बारिक, सायरा बानो और साधना के साथ जॉय मुखर्जी को काम करने का बेहतरीन

जॉय मुखर्जी ने नीलम के साथ शादी की थी। मोनोजॉय और सुजॉय जॉय मुखर्जी के दो बेटे हैं और जॉय मुखर्जी की एक बेटी।

0: के आंखें बिछा दूं, करूं क्या ये मेरी समझ में ना आए। बहुत
1: जोय मुखर्जी की होम प्रोडक्शन में फिल्म हमसाया और एक बार मुस्कुरा दो, ये दोनों फिल्में कामयाब साबित हुई।

राजेश खन्ना और जय मुखर्जी दोनों दोस्त थे। राजेश खन्ना ने फिल्म इंसाफ मैं करूंगा में जॉय मुखर्जी को विलेन का रोल ऑफर किया। फिर क्या था, जॉय मुखर्जी ने ये रोल एक्सेप्ट किया और फिल्म कामयाब

0: अभी तो मालूम नहीं है।
1: हमसे सुनो,
2: फिल्म लव इन शिमला, हम हिंदुस्तानी, एक मुसाफिर एक हसीना, फिर वही दिल लाया हूँ, आओ प्यार करें, जी चाहता है, इशारा जिद्दी, दूर की आवाज, बहू बेटी, लव इन टोक्यो, ये जिंदगी कितनी हसी है, साज़ और आवाज, शागिर्द, एक पली मुस्काई, हमसाया दिल और मोहब्बत, दुपट्टा आग और दाग, एहसान, इंस्पेक्टर, मुजरिम, पुरस्कार, कहीं आर कहीं पार, एक बार मुस्कुरा दो, हरिवान, छैला बाबू, फूलन देवी, इंसाफ मैं करूंगा, लव इन बॉम्बे, ये कामयाब फिल्में साबित हुई जिसमें जॉय मुखर्जी ने बेहतरीन अदाकारी के जलवे अपने चाहने वालों तक पहुंचाए।
1: तुम

जॉय मुखर्जी अपने जमाने के सबसे खूबसूरत एक्टर माने जाते रहे हैं। 6'2" उनका कद था, गोरा रंग और उनकी अदाकारी लाजवाब बेमिसाल साबित हुई।

73 साल की उम्र में 9 मार्च सन 2012 जॉय मुखर्जी मुंबई के लीलावती अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कहा। जॉय मुखर्जी एक खास बीमारी में मुब्तला

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवरटाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी का अम्बाला का अपना रेडियो। ये

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने, स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। लेकर आई हूं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट की नई श्रृंखला। आज का हमारा टॉपिक है जित देखूं तित भला। जैसा हमारा चित होता है, हमें संसार भी वैसे ही दिखाई देता है। यदि मन में सकारात्मकता हो तो हर ओर अच्छाई नजर आती है। हालात भले डगमग हो, मन अच्छाई पर स्थिर रहता है, अच्छा महसूस होगा। शोध बताते हैं कि दूसरों की सराहना करने से मस्तिष्क में फील गुड हार्मोन बढ़ते हैं और तनाव कम होता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार लोगों की अच्छाई देखना कोलेस्ट्रॉल घटाकर रक्तचाप संतुलित रखने में मदद करता है। वही शान एकर अपनी पुस्तक द हैप्पीनेस एडवांटेज में बताते हैं कि सकारात्मक नजरिया दूसरों से सीखने, प्रेरित रहने और अधिक सफल बनाने में मदद करता है। सराहना से बढ़ेगा अपनापन। जब आप दूसरों की अच्छी आदतों और गुणों को पहचानते हैं तो लोग स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं और आप पर भरोसा करने लगते हैं। डेल कारंगी की कालजाई पुस्तक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल का मूल संदेश यही है, दूसरों की सच्ची प्रशंसा करें और उनमें वास्तविक रुचि लें। ऐसा करने से रिश्ते मजबूत बनने के साथ साथ समाज में सम्मान और प्रभाव भी बढ़ता है। व्यक्तित्व में आएगा निखार। दूसरों की अच्छी आदतों पर ध्यान देने

जिसे हम अनजाने में उन्हें अपने जीवन में अपनाने लगते हैं। स्टीफन कवी की पुस्तक द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में बताया जाता है कि प्रभावी लोगों की खूबियों को समझना व उनसे सीखना हमें अपने व्यक्तित्व का बेहतर संस्करण बनने में मदद करता है। प्रशंसा से पनपेगा आत्मसम्मान। दूसरों में अच्छाई खोजने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम किसी के गुणों की सराहना करते हैं तो हमारा अवचेतन मन स्वयं को भी उसी सकारात्मक ऊर्जा से जोड़ लेता है। दूसरों की मदद करना और उनके प्रति सकारात्मक रहना आत्मसम्मान को मजबूत करता है तथा भीतर संतुलन और मानसिक स्थिरता की भावना को भी बढ़ाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में वृद्धि। लोगों की अच्छी आदतों को ध्यान से देखना हमारी अवलोकन शक्ति को बढ़ाता है, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दूसरों के नजरिए और गुणों को समझना प्रभावी नेतृत्व को पहचान है, क्योंकि इससे हम उनके व्यवहार के पीछे छिपे सकारात्मक कारणों को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। बढ़ेगा जुड़ाव, घटेगी तन्हाई। लोगों के प्रति सकारात्मक नजरिया अपने दुखों से बाहर लाने में मदद करता है। जो लोग दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देते हैं उनमें अकेलापन कम होता है। दूसरों में अच्छाई देखना एक सकारात्मक हैबिट लूप बनता है। लोग जितना अच्छाई देखते हैं उतना ही मन में शांति और खुशी बढ़ती है। मिलेगा परस्पर सम्मान। जब आप किसी के अच्छे गुणों की सच्ची सराहना करते हैं तो वो व्यक्ति आपके प्रति अधिक सहयोगी और सकारात्मक हो जाता है। लोग उन लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं। यही से आपसी सम्मान का सकारात्मक चक्र शुरू होता है। प्रभावी बनेगा कामकाज। पेशेवर जीवन में लगातार कमियां निकालने से कार्यस्थल का माहौल तनावपूर्ण बनता है, जबकि सहकर्मियों की अच्छाइयों पर ध्यान देने से उत्साह बना रहता है। शोध बताते हैं कि सकारात्मक गुण पहचानने वाले कर्मचारियों की कार्य क्षमता लगभग 30% अधिक होती है। बदल जाएगा नजरिया। जब हम किसी की अच्छी आदतें जैसे समय की पाबंदी या धैर्य की सराहना करते हैं तो बिना हीन भावना के अपनी कमियों को भी एहसास होता है। यही आत्म सुधार का सहज तरीका है। इसके साथ ही आज का रेडियो पॉडकास्ट यहीं पर खत्म होता है। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: जब देखो पढ़ाई पढ़ाई, थोड़े घर के काम में हाथ बटाना भी सीख ले, के करेगी इतना पढ़ के।
1: ITI में दाखिला लूंगी और फिर एक अच्छी नौकरी करके अपने परिवार के सारे सपने पूरे करूंगी।
0: इतना आसान हो गया के?
1: माँ लगता है आपको पता नहीं कि महरी हरियाणा की ITI में दाखिले शुरू हो गए हैं, जहाँ पे 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवा राज्य की 197 सरकारी और 180 प्राइवेट ITI के एक और 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं। इन ITIs में 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
2: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
3: Deutsche Bozan, 90.0 Radio Vitasta, Ham Safar Zindagi Hund.
4: आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपकी जिंदगी की रवानी। ललेश्वरी, जिन्हें ललदत्त या ललेश्वरी शिव योगिनी भी कहा जाता है, 14वीं शताब्दी की कश्मीरी संत कवियत्री और शिव दर्शन की प्रमुख साधिका थी। उन्होंने ललवाक नाम से जाने जाने वाले रहस्यमयी दोहों में जीवन, आत्मा और ईश्वर के गहरे सत्य व्यक्त किए। उनकी वाणी में भक्ति, दर्शन और मानवीय संवेदना का अद्भुत संगम मिलता है। ललेश्वरी ने समाज को बताया कि ईश्वर मन के भीतर है, बाहरी अडंबरों में नहीं। शिव योनि का अर्थ है शिव की सृजनात्मक ऊर्जा, अर्थात वह दिव्य स्रोत जिससे सृष्टि की उत्पत्ति होती है। कश्मीर शिव दर्शन में शिव योनि को सृजन, चेतना और शक्ति का प्रतीक माना गया है। ललेश्वरी की वाणी में शिव योनि का उल्लेख आत्मबोध और परम चेतना की अवस्था को समझाने के लिए आता है। ललवाक शब्द का अर्थ है लल यानी ललेश्वरी, के वाक यानी वचन या दोहे। ये छोटे छोटे दोहे या सूक्तियां हैं जिनमें उन्होंने साधना, आत्मज्ञान, प्रेम और सच्चे ईश्वर की अनुभूति को सरल भाषा में व्यक्त किया है। ये वाक आज भी कश्मीर की आत्मा की आवाज माने जाते हैं। हमने ललेश्वरी के ललवाक को हिंदी और कश्मीरी में तैयार कर आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम मानते हैं कि ये ललवाक हमारी जीवन का रास्ता आसान कर देती है। इन ललवाक को समझाया है हिंदी और कश्मीरी में डॉक्टर राज नेहरू जी ने और आवाज दी है श्रीमती नीरजा पंडित ने। इनको तैयार किया है जाने माने फिल्म निर्देशक और निर्माता अशोक पंडित ने। तो आइए सुनते हैं ललवाक की ये श्रृंखला।
5: नमस्कार, आज का जो ललवाक है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इनसाइट से भरा हुआ ललवाक है ललदत्त का, और हमारे आज के इस जीवन के दृष्टिकोण में इसकी बड़ी महत्वता है। कश्मीरी में ये ललवाक बोलता हूँ, नावद बरस अटगंट ड्योलगो, नावद बरस अटगंट ड्योलगो, देहकान हुलगो, हाय क्या कहो, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यो, गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यो, फल रस खोल गो, हाय क्या कहो। अब ये देखिए, इसमें नावद बरस अटगंट ड्योलगो की बात करती है। नावद मतलब कश्मीरी में जैसे मिठाई कहते हैं, मीठा कहते हैं, मिश्री कहते हैं, तो ललदत्त मिश्री को का एक मेटाफर यूज करती है। वो कहती है कि जो दुनिया की इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, ये दुनिया की इच्छाएं आकांक्षाएं सुख जिसका हम भोग करना चाहते हैं मिठाई के समान है, और ये मिठाई की लालसा हम सबको होती है, क्योंकि मीठे की एक बार आदत लग जाए तो आदमी का मन हमेशा अतृप्त रहता है और मीठा चाहता है, क्योंकि पहले ये मीठा बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जैसे जैसे ये मीठा और आना शुरू कर देता है तो ये जीवन में एक बोझ के समान हो जाता है। हमें पता भी नहीं लगता ये बोझ कब बन चुका होता है, क्योंकि लालसा ने हमारी आंखें अंधी कर दी होती है, हमें दिखता ही नहीं है। हम हर चीज चाहते हैं, ये भी मुझे मिले, ये भी मुझे मिले, एक चीज मिल जाती है तो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। तो ललदत्त इन आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को, इन इच्छाओं को इस मिठास से जोड़ती है और कहती है कि ये जो इच्छाएं हैं ये बड़ा बोझ क्रिएट कर देती हैं हमारे ऊपर, और फिर कहती है कि देहकान होलगुम भाई क्या कि हो, मतलब फिर ये बोझा इतना भारी हो जाता है हम पर कि जो मेरा व्यक्तित्व है, जो मेरा अस्तित्व है, जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, जिस चीज के लिए मैं इस जीवन में आया हूँ, वो चीज मुड़ना शुरू हो जाती है, वो चीज उस भार के नीचे दब जाती है, टेढ़ी हो जाती है। और फिर कहती है गौरसुंद वनुन रावण त्योल प्यों, गुरु ने मुझे कुछ ऐसा कहा कि तो उस दिशा की ओर चल, उस परमात्मा को खोजने चल। मुझे वो दिशा अच्छी तो लगी, लेकिन उसको करने के लिए मुझे इस दुनिया से अपने आप को खींचना है बाहर। अब दुनिया से अपने आप को खींचना बाहर किसी को अच्छा नहीं लगता, वो बड़ा तकलीफ देह है, ये सबके लिए बड़ा बड़ा कष्टकारी होता है। तो इसलिए फिर कहती है फलरोस खोलगोम हाई क्या की हो, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अब मैं इस दिशा में जाऊं या मैं इस दिशा में रहूं, मैं छोड़ू या पकड़े रखूं। तो ये बड़ी पेनफुल स्टेट होती है, लेकिन यही पेनफुल स्टेट अगर वास्तविकता आप देखें, यही ट्रांसफॉर्मेशन का शुरुआत है। अगर जीवन में आप इस स्टेज को क्रॉस कर गए तो आप समझिए आप उस शिव को प्राप्त हो गए।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: तुझु भोजन नमत अशारिया सिफर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी हूँ।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

हमारा यह सफर यूं ही चलता रहा और गुजरती गई सदियां, पनाह गाहों में पनाह लेने की ख्वाहिश सीने में ही दब गई। तुमसे मिलना, तुमसे बिछड़ना एक आदत सी बन गई। बीते लम्हे रुसवाई का रास्ता दे गए और पथरीली रेतीली राहें मंजिल का पता बता गई।

छूट गए साथी, सिमट गई जिंदगी, जज्बा मोहब्बत का टूट गया, बिखर गया हर पल अपना साया भी पराया होने लगा। जो मिले वो अचानक रूठ गए, यहां के साहिल दरियाओं से बिछड़ गए और इन दरियाओं के पत्थर पानी के लिए तरस रहे हैं। इन्हीं पानियों में कभी चांद आकाश से उतरकर डुबकी लगाया करता था, पर अब सब कुछ अलग है, भिन्न है। जब अपने ही पराए हुए

बाती ही और है तुम्हारी फरामोशी। रंग बिखर पड़े हैं पर रक्स करती हैं फिजाएं। शायद सोचा होगा कि हवाओं के रुख में बदलाव होगा, पर ये जरूरी तो नहीं कि मौसम बदलते ही तुम लौट आओगे। इन घने बादलों को चीर कर, और यह भी तो जरूरी नहीं कि दिल की बातें हों, बातों बातों में तुम याद आओगे।

एक प्यारा सा गांव है, पर अजनबी रास्ते हैं। किससे मुखातिब हो जाए, हर कोई एक दूसरे से अनजान है। इन फासलों के दरमियां अपने आप को भी पहचानना मुश्किल सा लगता है, लेकिन इसके बावजूद यहां खुशबू है अपनेपन की, यहां मिठास है मोहब्बतों की, और दूर एक कोने में यहां दर्द भी

परी आसमां से उतरी थी, मुझे छूकर गुजर गई। अपनी दुपट्टे से मेरी नींदों को चुरा ले गई। मेरे कानों में चुपके से कुछ कह गई। ये कुछ लम्हे तुम्हारे नाम हो गए, इनको संजो कर संभाल कर रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे शामिल कर मुझ पे एहसान जताया, नवाजिश करम, शुक्रिया।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: यू आर लिसनिंग FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: सोया हूँ मुझे सोने दे।
1: ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जांबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतेह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया।

0: सन 1999 पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने बगैर किसी आभास के अपने सैनिकों को एलओसी पार कर भारत की सीमा के अंदर भेज दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ। जनरल का प्लान सीधा और साफ था। सर्दियों की चरम पर प्रशिक्षित कमांडोस को जिहादी जामा उड़ाकर भारत की सरहद के पार भेजना, वहां पोस्ट और बंकर पर कब्जा करके कश्मीर और लद्दाख को जोड़ती कड़ी को तोड़ना। द्रास सेक्टर की मुश्को घाटी, मारपुला रिज लाइन, कारगिल के आसपास काक्सर, बटालिक सेक्टर, चोरबाटला सेक्टर और सियाचिन के दक्षिण में तुर्तुक पर पाकिस्तानी फौज ने धोखे से अपना कब्जा जमा लिया था। लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया की अगुवाई में निकली पेट्रोलिंग पार्टी बड़े रहस्यमय ढंग से गायब हो गई थी। कुछ दिनों के बाद उनका क्षत विक्षत शव पाकिस्तानी सेना ने हमें सौंपा, जिस निर्दयता से उन्हें मारा गया था प्रशिक्षित पाकिस्तानी फौजियों की ही कुचेष्टा थी।
1: तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी पड़ोसी देशों के साथ सद्भावना में विश्वास रखते थे, पर पाकिस्तान के इस छुपकर हमला करने की साजिश से वो अत्यंत क्षुब्ध हो उठे।
2: हम शांत चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांत की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे।
1: उन्होंने देश की तीनों सेनाओं को बगैर एक पल गवाए दुश्मन की गोली का जवाब गोलों से देने का आदेश सुनाया।
0: तो भारतीय सेना ने तुरंत एक्शन लेते हुए युद्ध का ऐलान कर दिया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक के नेतृत्व में लड़ी गई कारगिल की जंग अपने आप में सैनिक रणनीति और साहस का एक उदाहरण है। ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। थल सेना दुश्मन को खदेड़ रही थी, अब आसमान से आग बरसाने की पारी थी। वर्तमान वायुसेना प्रमुख विंग कमांडर बीएस धनोआ कारगिल युद्ध के दौरान फाइटर स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा, के नचिकेता और स्क्वाड्रन लीडर रघुनाथ नाम्बियार जैसे दिलेर फाइटर पायलट भी कारगिल के हवाई हमलों में नायक के तौर पर उभरे। नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। इसी दौरान भारतीय नौसेना भी सक्रिय हो उठी। वाइस एडमिरल माधवेंद्र सिंह की अगुवाई में पूर्वी और पश्चिमी बेड़े एकत्रित हुए और तुरंत उत्तरी अरब सागर से कराची बंदरगाह की घेराबंदी कर दी गई। भारतीय नौसेना के इस मिशन का नाम था ऑपरेशन तलवार। इतिहास बदलने जा रहा।

0: अगर मुझे अपने खून को साबित करने से पहले मौत आ गई तो कसम से मैं मौत को ही मौत की नींद सुला दूंगा।
1: कारगिल का ये युद्ध भले ही उच्च अधिकारियों की विस्तृत प्लानिंग और रणनीति के अनुसार लड़ा गया हो, लेकिन इसे जीतने वाले औसत 20 से 25 साल की उम्र के वो नौजवान सैनिक ही थे जो शेरों की तरह दुश्मन पे टूट पड़े। ये वो बेटे थे जिन्हें अपनी माँ के आत्मसम्मान की चिंता अपनी जान से कहीं ज्यादा थी। पूरे विश्व पटल पर भारतीय विजय का डंका बजने लगा। आज हमारा भारत विश्व में एक नई शक्ति बन के उभर रहा है। कारगिल की ये विजय उस नए भारत की नींव का पत्थर है, क्योंकि इस युद्ध में बही खून की हर एक बूंद ने हमारे आज को सींचा है। वही खून प्रेरणा देता है, बढ़ो आगे, मत रुको, पूरी शक्ति सहित निर्भयता से हर असंभव पहाड़ इसी तरह जीत लो। सीने में जो भारत भूमि के प्रति प्रेम है वो पूर्ण प्रज्वलित हो। जब संपूर्ण विश्व के शीर्ष शिखर पर भारत का ध्वज फहराएगा, तब मेरे देशवासियों हर दिन विजय दिवस कहलाएगा।
2: मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित है। देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आपसे आह्वान करता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे वंदे
3: वंदे मातरम, वंदे मातरम।
4: आप सुन रहे हैं अंबाला की आवाज, ये है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी आज लेके आया हूं प्रोग्राम देश की आवाज का एक नया अंक। आज हम बात करेंगे कारगिल दिवस की। कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को कारगिल युद्ध के नायकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। कारगिल विजय दिवस सफल ऑपरेशन विजय के नाम पर 26 जुलाई को भारत में मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय भारतीय सेना द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था। 26 जुलाई 1999 के दिन भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय को सफलतापूर्वक विजय बनाया और भारत भूमि को घुसपैठियों से आजाद किया। कारगिल दिवस पर हमने एक खास शख्सियत को बुलाया है जो मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, बहुत समय से मैं उनको जानता हूं। मैं आपको उनका परिचय देता हूं और उनके साथ आज हम कारगिल दिवस के विषय में बात करेंगे और आपको देशभक्ति के बारे में भी बहुत सारी जानकारी देंगे। बहुत सारे कवियों ने कारगिल दिवस पर कविताएं लिखी है, वो भी हम आपको सुनाएंगे। पर सबसे पहले मैं आपको जानकारी देता हूं आज के मेहमान की। आज हमारे साथ रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में आमंत्रित है श्री मुकेश गुप्ता जी, जो भारतीय जीवन बीमा निगम में विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत है। बहुत ही मेहनती और लोगों के लिए तत्पर हमेशा रहते हैं। बाकी जानकारी के लिए हम बात करते हैं श्री मुकेश गुप्ता जी के साथ। और मुकेश गुप्ता जी, आपका रेडियो वितस्ता के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
5: धन्यवाद भारत जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया कारगिल दिवस के बारे में, अपने देश के बारे में कुछ बात करने का। और मैं रेडियो वितस्ता के माध्यम से ये धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपने इस मौके पर, इस दिवस पर, कारगिल दिवस पर हम कुछ बात कर पाए, अपने देशवासियों को कुछ अपनी भावनाओं को और देश प्रेम की भावनाओं के बारे में बात कर सकें, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं मुकेश गुप्ता, विकास अधिकारी, भारतीय जीवन बीमा निगम अम्बाला कैंट में 1991 से कार्यरत हूँ और ऑलमोस्ट 26 साल के कार्य के दौरान हमने हमेशा बहुत सिंसियरिटी से, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी भारतीय जीवन बीमा निगम के लिए जो भी हमें काम दिया गया है, जो भी हमारा काम है, हमने उसको पूरा करने की कोशिश की।
4: बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। मुकेश जी, जैसे हम आज कारगिल दिवस पर बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको कारगिल दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और सबसे पहले कारगिल दिवस को सोच के आपके मन में क्या बात सबसे पहले आती है?
5: कारगिल दिवस के बारे में जब हम ये महसूस करते हैं कि जब आज से 20 साल पहले ये घटना घटी थी, तो उसको सोच के भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि कैसे दुश्मन देश ने हमारे सैनिकों के ऊपर और हमारी सरहद के ऊपर ये हमला किया और उसको कितनी कठिनाइयों और मुश्किलों के बावजूद हमारे सैनिकों ने, हमारे ऑफिसर्स ने इसको बखूबी लड़ा और बहुत हिम्मत के साथ इस युद्ध को जीता, जिसमें बहुत सारा नुकसान हुआ हमारे सैनिकों का, बहुत सारी जाने गई, बट उसके बावजूद भी हमारे देश ने वो कर दिखाया जो दुनिया में एक मिसाल बन गया, हमारे देश की देशभक्ति का, हमारे जवानों की मेहनत का, हमारे जवान कितने शौर्यवान हैं उस चीज का।
4: आपने बहुत सही कहा मुकेश जी, हम गौरवान्वित महसूस करते हैं जब हमारे जवानों ने हमारे देश का जो तिरंगा है उसको ऊंचा कर दिया, खास करके उन चोटियों पर जो भारत का हिस्सा था जिसमें हमारे दुश्मन घुस आए थे। हम हमेशा अपने दुश्मनों को आज तक पटक नहीं देते आए हैं और उसके बावजूद भी वो अपनी सोच वैसे ही रखे हुए हैं और मुझे पूरी आशा है कि जो हमारे जवान हैं वो उनको मुंह तोड़ हमेशा जवाब दे देंगे। मुकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो लोग फौजी और जो हमारे सेना बल के लोग वतन पर शहीद हो गए, अब उनके लिए क्या कहते हैं?
5: मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि जब भी हम पैदा होते हैं उसके बाद हम अपने कार्यों में लग जाते हैं, हर इंसान ने कोई ना कोई कार्य चुनना होता है अपने जीवन में, बट ये एक बहुत बड़ी बात है कि जिन सैनिकों ने, जिन परिवारों ने अपने बच्चों को फौज में जाने के लिए, सुरक्षा बलों में जाने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने ये बताया कि आप अपने जीवन में सैनिक बने और अपने देश की रक्षा करें, अपने देश के काम आए, और बहादुरी से कहीं पर भी जब भी कोई जरूरत पड़ती है और देश के ऊपर कोई बाहरी अटैक होता है या कोई दुश्मन का हमला होता है, तो उसको कैसे अच्छे से अपने देश की सुरक्षा को निभाना है, कैसे उनको मार गिराना है और कैसे अपनी सरहदों को अपने देश की रक्षा के लिए बचाना है, ये मैं कहना चाहूंगा कि ये उन परिवारों की और उन लोगों की जो इसको एज ए कैरियर चुनते हैं हमारे देश की सेवा करने के लिए, ये उनकी बहुत बड़ी बात है और ये हर एक के मन में होना चाहिए कि कभी ना कभी वो देश के फौजियों के लिए सम्मान रखें और देश की सुरक्षा से रिलेटेड सभी बातों पर, सभी तथ्यों पर इतना ध्यान रखें कि उनको देश के लिए कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सुरक्षा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए।
4: आपने एकदम सही कहा कि जो भी हमारे सुरक्षा बल है वो देश के लिए अपने प्राणों को निछावर करने के लिए कभी भी नहीं सोचते हैं। जैसे ये प्रोग्राम है देश की आवाज, तो देश की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ देश के लिए सुरक्षा बलों को ही नहीं काम करना है। जैसे आपने अभी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि आपको जो भी काम दिया गया आपने वो बहुत ही जिम्मेदारी से किया, तो देश के लिए हर एक व्यक्ति का साथ होना जरूरी है, चाहे वो बॉर्डर पर हमारा सुरक्षा बल हो या देश की उन्नति के लिए जो हम बाकी लोग काम करते हैं। मैं मुकेश जी आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जीवन बीमा में रह के जो आप लोगों की सेवा करते हैं, आप अपनी तरफ से देश को क्या दे सकते हैं अगर देश को जरूरत हो?
5: देश को जरूरत हो तो हम देश के लिए अपनी जान निछावर कर सकते हैं। जो भी उस वक्त हमारी तरफ से एक भारत का नागरिक होने के नाते जो भी फर्ज बनता है और जो भी हमारे कर्तव्य बनते हैं, हम उसको बखूबी निभाना चाहेंगे और उसको पूरा करना चाहेंगे और उस पर पूरा खरा उतरना चाहेंगे हर सूरत में, हर मौके पर।
4: अच्छा मुझे आप मुझे जी ये बताइए, आप कुछ गुनगुनाते नहीं हैं या आप खाली सुनते हैं? क्योंकि इस प्रोग्राम में हम देशभक्ति की बात तो करते ही हैं और हम लोगों तक देशभक्ति से प्रेरित गाने भी उनको सुनाते हैं। तो क्या आपके मन में कोई ऐसा गाना आता है जो आपकी फरमाइश हो, जो हम अपने सुनने वालों तक भी पहुंचाएं?
5: हाँ बिल्कुल, गुनगुनाना तो एक जीवन का हिस्सा है। कहीं ना कहीं जब भी इंसान अपने मूड में होता है या एक ऐसे क्षणों में होता है जब उसको कुछ ना कुछ रिलैक्स करना होता है, तो वो कुछ ना कुछ दो तीन लाइनें जो उसकी पसंदीदा होती हैं वो उनको गुनगुना देता है। आज इस मौके पर देश से जुड़ी हुई बातें कर रहे हैं हम, तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि हम अपने देश के लिए जान भी दे सकते हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ अगर हम ये गाना गुनगुनाएं और इसको सुनें कि दिल दिया है जान भी देंगे, ऐ मेरे वतन तेरे लिए।
4: अरे दोस्तों, हमारी बातचीत मुकेश जी के साथ जारी है। सुनते हैं ये देश प्रेम से भरा हुआ गाना, दिल दिया है जान भी देंगे।

0: सभी सुनने वालों का एक बार फिर स्वागत है कार्यक्रम देश की आवाज में। आज हमारे मेहमान है श्री मुकेश गुप्ता जी। मुकेश गुप्ता जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हर विषय में महारत हासिल की है, चाहे वो अपने काम का हो या कोई और काम। इनसे बात हम करेंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ शेर सुनाता हूं जो बहुत सारे लोगों ने कारगिल दिवस पर लिखे हैं। आज फिर एक सिपाही जंग में शहीद हो गया, जीते जीते अपने सांसें हमारे नाम कर गया। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है, उछल रहा है जमाने में नामे आजादी। बड़ी जवानी में अपनी मां के चरणों में कर दिया अपने प्राणों का समर्पण, रहेंगे हमारे दिलों में वो, अपने शब्दों से करता हूं श्रद्धा सुमन अर्पण। हम सभी उन वीर जवानों को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पण करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हम विजयी हैं, इसलिए हम आज कारगिल विजय दिवस मनाते हैं। आज हम अपने मेहमान के साथ बात कर रहे हैं और आज हमारे मेहमान मुकेश गुप्ता जी हैं। मुकेश गुप्ता जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि आप कारगिल दिवस के बारे में हमें कुछ जानकारी दे दीजिए।
1: भारत जी, कारगिल दिवस जो है वो हमारी जीत का दिवस है, जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया था। और ये अटैक जो है 3 मई 1999 को नोटिस किया गया था कि कारगिल में पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की है। उसके बाद 10 मई को इसमें द्रास, काक्सर और मुश्को जैसे एरिया में भी उनको पता लगा हमारे सैनिकों को कि पाकिस्तानी सैनिक जो हैं उन्होंने वहां पर घुसपैठ किया है। उसके बाद 26 मई को हमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर को एयरफोर्स को ये ऑर्डर्स करने पड़े कि भी आप भारतीय सैनिकों की मदद कीजिए, क्योंकि वो एक लड़ाई ऐसी जगह पर थी जहां पे भारतीय सैनिकों को पाकिस्तानी सैनिकों का मुकाबला करने के लिए बहुत परेशानी और बहुत दिक्कत थी। उस इलाके में, उस एरिया में वो ऐसा एरिया था जहां से भारतीय सैनिकों को ऊपर की तरफ अटैक करने में बहुत परेशानी आ रही थी। तो अल्टीमेटली एयरफोर्स को मदद ली गई, उनसे हेल्प ली गई और उसका नतीजा ये रहा कि 4 जुलाई को हमने टाइगर हिल को जीत लिया पाकिस्तानियों से। और उसके बाद दोबारा से 13 जून को इंडियन आर्मी ने द्रास के एरिया में भी विजय हासिल कर ली। धीरे धीरे हम अपने इस विजय को, इस कामयाबी को बढ़ाते चले गए और फिर हमने 5 जुलाई को इंडियन आर्मी ने जो द्रास का जो इलाका था वो भी रिकैप्चर कर लिया। और इसके चलते चलते 7 जुलाई को हमारा जो बटालिक का एरिया था वो चोटी भी हमने हासिल कर ली पाकिस्तानियों से। और 14 जुलाई को ये विजय ऑपरेशन जो है ये सक्सेस हुआ और ये कामयाब हुआ। इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जो है 26 जुलाई 1999 को कारगिल कॉन्फ्लिक्ट का ऑफिशियली एंड किया गया दोनों देशों की तरफ से।
0: आपने पूरी जानकारी दे दी कारगिल दिवस के बारे में। 26 जुलाई को दोनों देशों की ओर से इस ऑपरेशन को खत्म किया गया था, इसलिए विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। विजय दिवस के ऊपर पूरे देश में श्रद्धांजलि अर्पित की गई उन वीर जवानों को जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, और उनके लिए भी शाबाशी दी जो इस समय हमारी भारतीय सेना में कार्यरत है। हमारे प्रधानमंत्री से लेके एक आम नागरिक ने 26 जुलाई को यानी आज के दिन सारे भारतवर्ष में खुशी का इजहार किया, खुशी से ये दिन मना लिया। मुकेश जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि हमें देश प्रेम बढ़ाना चाहिए और हमें अपने देश के लिए देश प्रेम की बहुत सारी जरूरत है। क्या आप ऐसा मानते हैं कि इन दिनों जो हमारी नई पीढ़ी है उनमें देश प्रेम की कुछ कमी है, या मुझे ऐसा लगता है?
1: नहीं भारत जी, ऐसा नहीं है कि हमारे युवा पीढ़ी में कोई देश प्रेम की कमी है। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं डिजिटल और आईटी कैरियर्स की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, या जो कैरियर्स उनको पता हैं उनकी तरफ वो ज्यादा बढ़ते हैं। अगर हम अपने देश के बच्चों को, देश के युवा को 25 साल से पहले कम से कम एक साल या 6 महीने की वॉलंटरी ट्रेनिंग टेरिटोरियल आर्मी में काम करने के लिए दें, जिससे उनको देश की सीमाओं के बारे में और देश के सैनिक क्या क्या काम करते हैं, कैसे बाहर के देशों से हमारे देश को, हमारी सीमाओं को खतरा होता है, उसको कैसे बचाना होता है, जब ये बातें उनको पता लगेंगी तो वो अपने आप देश प्रेमी तो है ही है, पर वो देश प्रेमी की भावना से भर भी जाएंगे और अपने देश के लिए निछावर होने के लिए सैनिक या जिस भी फील्ड में, चाहे वो इंडियन एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, तीनों जो फोर्सेस हैं हमारी, जो भी उन बच्चों को पसंद हो, जिस रूप में भी वो देश की सेवा करना चाहें और अपने आप को सक्षम समझें वो काम करने में, हमेशा वो आगे रहेंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अपने युवा को ये जानकारी देनी चाहिए कि हमारे जो सैनिक हैं हमारी देश की सुरक्षा सीमाओं पर कैसे करते हैं और उनको किस तरीके की मुसीबतें और परेशानियां झेलनी पड़ती हैं।
0: ऐसे तो सरहदें जो है वो मुल्कों को बांटती है, पर जो हमारे कल्चर है, जो हमारी सोच है, वो दुनिया भर में हर एक मनुष्य की एक जैसी है। तो जो ये सरहदें बांटती है देशों को, उसके हिसाब से जो उस देश का वातावरण होता है, जो उस देश का कल्चर होता है, उसको हमें समझना चाहिए, मानना चाहिए और अपने देश के लिए हमें हमेशा काम करना चाहिए और देश भावना से हमें दूसरों के दिलों में भी देश की भावना जगानी चाहिए। मुकेश जी, हम ये बात जारी रखते हैं और अब आपके मन में कौन सा गाना ऐसा आ रहा है जो हम सुनने वालों तक पहुंचाए?
1: मैं अपने श्रोताओं को एक बड़ा ही अच्छा गाना है देश भावना से जुड़ा हुआ, वो चाहूंगा कि आप इनको सुनाएं। जचीदे लाइने हैं उस मुल्क की सड़क को।
0: जी दोस्तों, आप हमारा ये प्रोग्राम सुनते रहिए और आज हम जो बात कर रहे हैं ये है, अभी हमारी बात जारी है, आइए सुनते हैं ये देश प्रेम से भरा ये भी।
2: उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगेबान है आंखें,

0: जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी जिंदगी में एक हम सफर का होना बहुत ही जरूरी है। यही कोशिश है रेडियो वितस्ता की, और हम आपसे ये वादा करते हैं कि हम हमेशा आपकी जिंदगी का हम सफर बनने की कोशिश करेंगे। आज हम प्रोग्राम सुन रहे हैं इस समय देश की आवाज, और आज हमारे साथ जो मेहमान स्टूडियो में आमंत्रित है वो है श्री मुकेश गुप्ता जी। इनसे हम बात कर रहे हैं, मैं आपको कुछ शेर सुना देता हूं जो देशभक्तों ने कारगिल दिवस पर लिखे हैं। वतन की खाक जरा एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। मुझे छाती से अपने तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। ये बहुत बड़ी बात है जब हमारा सैनिक अपने घर परिवार को, अपने नन्नू मुन्नू को छोड़ के देश की रक्षा के लिए सीमा पर चला जाता है और वहां पर अपने प्राण निछावर करता है अपने देश के लिए। वो तड़पती आंखें जो उनकी माँ की होती है, उनके परिवार की होती है, वो हमारे सीने को छलनी कर देती है। हम उन वीर जवानों को एक बार फिर सल्यूट करते हैं, हम उनके चरणों में फूल बिछाते हैं, और हम हमेशा उनसे प्रेरित रहते हैं और हमारा देश उनसे गौरवान्वित होता है। इस विषय पर हम बात कर रहे हैं मुकेश गुप्ता जी से। मुकेश जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आप लगभग सारे हिंदुस्तान में घूमे हैं, आपको क्या लगता है कि हमारा जो देश है वो किस तरीके का हिंदुस्तान है, और आप क्या अपेक्षा करते हैं और क्या आप सोचते हैं कि हमारा देश नया भारत बने, एक भारत बने और एकजुटता से हम परिपूर्ण हो?
1: हाँ, मैंने अपने देश को ऑलमोस्ट सभी हिस्से को देखने की कोशिश की है। जब भी मुझे मौका मिला है, मैं कहीं ना कहीं छुट्टियों में घूमने जाता हूँ, तो देश के हर हिस्से को कोशिश करते हैं कि अलग अलग तरीके से कवर किया जाए, घूमा जाए, भ्रमण किया जाए, वहाँ के लोगों को मिला जाए, देखा जाए कि हमारे जो वहाँ लोग रहते हैं वो किस तरीके से रहते हैं, क्या उनका पहनावा है, क्या उनकी बोलचाल है, क्या उनकी बातें हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हमारे देश का हर कोना बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा और देखने लायक है। हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे हम कभी भी मौका मिलता है, हम घूमने जाते हैं या घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, हमें एक बात में ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक भारत भ्रमण जरूर करना चाहिए। हमें अपने देश की अलग अलग स्टेट्स के लोगों को मिलना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, उनको समझना चाहिए कि उनकी क्या शौक हैं, क्या आदतें हैं, क्या अच्छाइयाँ हैं, जिनकी वजह से वो स्टेट, वो इलाका जो है वो इतना प्रगति पर रहता है, और वहाँ के लोग क्यों इतने अच्छे और प्रतिभावान दिखाई देते हैं। मैं एक ही बात इसमें कहना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी स्टेट्स हैं, हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ के, उनमें एक भावना का होना बहुत जरूरी है, वो ये कि हम भारतवासी हों। कोई रिलीजन हो, किसी भी तरह से वो किसी भी एरिया में रहता हो, वो एक अलग बात है, वो हमारा एड्रेस है, वो हमारी पहचान है सिर्फ, बट अदरवाइज हमारी जो एक्चुअल पहचान है वो सिर्फ है कि हम हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवासी हैं, और हमें सिर्फ भारत के लिए करना है, जो भी अच्छा करना है भारत के लिए सोचना है, भारत के लिए ही हमें जीना है, और भारत के लिए ही हमें अपनी जिंदगी में कंट्रीब्यूट करना है। तो हमें अपने देश के लिए सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में प्रेम की जो भावना है वो अपने तक ना सीमित रखे, अपने सभी लोगों को, अपने साथियों को, अपने बच्चों को, अपने परिवारों को और जितने भी जानने वाले लोग हैं उन सबको उनके माध्यम से आगे पहुंचाना चाहिए, और एक ही नारा और एक ही जीवन में सोच हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वो होनी चाहिए कि हम भारतीय हैं और सिर्फ भारतीय हैं।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताई, और वाकई हम सबको एकजुट होना चाहिए, और जैसे हम कहते हैं कि नया भारत बने, नया भारत और एक भारत हो। मुकेश जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि जो हमारे वीर जवान है, जो हमारे सैनिक है, उनकी भावनाओं को आप कैसे पढ़ते हैं?
1: भारत जी, मैं अपने देश के सैनिकों की भावना को कुछ इस तरह के प्रस्तुत करना चाहूंगा जो वो सोचते हैं, जो उनके हर वक्त मन में जो भावना बनी रहती है। दिल में हौसलों का तेज और तूफान लिए फिरते हैं, आसमान से ऊंची हम अपनी उड़ान लिए फिरते हैं। वक्त क्या आजमाएगा हमारे जोश और जुनून को, हम तो मुट्ठी में अपने जान लिए फिरते हैं। मेरे ख्याल से ये जो चार लाइनें हैं, ये मेरे देश के सैनिक और सुरक्षा बलों के जितने भी लोग हैं जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए सीमाओं पर तैनात हैं, उनकी भावनाओं, उनके जोश और उनके तन मन में जो हर वक्त एक बात घूमती रहती है कि अपने देश की रक्षा करनी है और देश की रक्षा के अलावा उनको कुछ और सुझाई नहीं देता, ये चार लाइनें उनकी भावना को बताने के लिए काफी होंगी।

0: आप सुन रहे हैं प्रोग्राम देश की आवाज। ये इस प्रोग्राम का अंतिम भाग है। हमारी कोशिश है कि हम समय समय पर आपके सामने ऐसे प्रोग्राम ले आए जिसमें हम देश प्रेम की बात करें, देश के बारे में बात करें, क्योंकि हर एक देश में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। हमारी कोशिश है कि हमारी जो बुराइयां हैं उनको हम दूर करें। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारा देश उन्नति करे और सारे विश्व में हमारे देश की पहचान नंबर एक की हो। मुकेश जी, इस कार्यक्रम का समय अब समाप्त हो रहा है। मैं अंत में आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप सारे भारतवर्ष को क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी, उन भारतीयों के लिए भी जो हमारे देश के बाहर रह रहे हैं, क्योंकि रेडियो विदस्ता सारे विश्व में सुना जा रहा है। हम आपकी बात, आपकी जो मैसेज है, आपकी जो आवाज है, आपका जो देश प्रेम है, ये हम उन तक भी पहुंचाना चाहते हैं।
1: मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से अपने देशवासियों को एक ही मैसेज देना चाहता हूं कि हम भारतीय हैं, हमें हमेशा एकजुट होकर रहना है, ताकि किसी भी तरह से कोई भी पड़ोसी देश, तो बहुत दूर की बात है, कोई भी देश, दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा देश कभी भी हमारे देश की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सके और ये सोच नहीं सके कि हमारे देश को कुछ नुकसान पहुंचाया जा सकता है। हम भारतीय हैं और हमारे भारतीयों की काबिलियत पूरे विश्व में अलग अलग तरह से पहचान की जाती है, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पर। मैं एक ही बात कहता हूं फिर दोबारा से कि हम भारतीयों को एकजुट होकर रहना है, और हमारे देश में इतनी मजबूती है, हमारा देश इतना मजबूत है कि किसी भी पड़ोसी देश का हमारे देश की तरफ देखना नामुमकिन होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि हमारा जो देश, भारत देश है, उसके लिए किसी भी तरह की गलत भावना का रखना वो असंभव है, और उसके बारे में सोचना उनकी एक पहली और आखिरी गलती रहेगा। अंत में मैं रेडियो विदस्ता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे ये माध्यम दिया अपनी बात को कहने का और आप लोगों तक पहुंचाने का। ये रेडियो विदस्ता की एक पहल वाकई में अम्बाला के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट पहल है। इस माध्यम से हमारी देश की, हमारी जो नगर की इंडस्ट्री है, वो अपनी बातों को और अपनी चीजों को, अपनी काबिलियत को पूरे विश्व तक पहुंचा सकती है, पूरे देश के अलग अलग कोने में पहुंचा सकती है। और एक ही बहुत ही एक ऐसा एफर्ट है, ऐसी क्रिएटिव एफर्ट है भारत जी की तरफ से, जिसके साथ साथ अगर हम चलें तो हम अपनी भावनाओं को, अपनी बहुत सारी बातों को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं और अपने जनता, अपने देश, अपने प्रांत और अपने स्टेट में अलग अलग लोगों तक इसको पहुंचा सकते हैं। मैं अंत में फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने मुझे ये मौका दिया और अपने देश के बारे में, अपने देशवासियों के बारे में इस कारगिल दिवस के मौके पर, विजय दिवस के मौके पर अपनी बातों को कहने का मौका दिया। धन्यवाद भाई जी।
0: धन्यवाद मुकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने रेडियो विदस्ता की बात की है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये है अम्बाला की आवाज, और मेरी भी यही कोशिश और मेरी टीम की भी यही कोशिश है कि हम अपने अम्बाला वासियों को एक प्लेटफॉर्म दें, एक आवाज दें, एक जगह दें, जहां से हम अपनी आवाज को पूरे विश्व तक पहुंचा सके। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि अम्बाला में किसी भी टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ उनको जगह और मौका देने की कोशिश होनी चाहिए, और वही रेडियो विदस्ता कर रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद रेडियो विदस्ता के स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। इसके साथ ही मैं इस प्रोग्राम का करता हूं मैं समापन। आप सबका समय शुभ हो। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।
1: धन्यवाद बालाजी। जय हिंद, जय भारत।

90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विदस्ता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विदस्ता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विदस्ता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विदस्ता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए।

योसा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
5: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो रेडियो वत्तस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ ते सुनते रहो अपने पसंद।

खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउन जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय

0: गोरी हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, ओ नटखट ओ खटपट ओ पनघट ओ झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बैना, ओ

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और साथ 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: आप सुन रहे हैं फ्रीक्वेंसी 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विद्यास्ता। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कृष्णा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। भिंडी की फसल पर बढ़ सकता है सफेद फफूंद का खतरा, संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करें। गर्मी के बीच बार बार मौसम के बदलाव से भिंडी की फसल में सफेद फफूंद यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग का खतरा है। करनाल क्षेत्र में कुछ जगह बागवानी विभाग टीम को यह लक्षण भी मिले हैं। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे नियमित रूप से खेतों का निरीक्षण करें और रोग के लक्षण दिखने पर नियंत्रण करें। प्रदेश में करीब 12,480 हेक्टेयर क्षेत्र में भिंडी की खेती की जाती है। पिछले वर्ष लगभग 1,34,143 टन उत्पादन दर्ज किया गया था। अंबाला, नूह, फतेहाबाद, सिरसा, हिसार, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और भिवानी भिंडी उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि सफेद फफूंद रोग की शुरुआत पत्तियों पर सफेद चूर्ण जैसे धब्बों से होती है। धीरे धीरे यह पत्ती को ढक लेता है जिससे प्रकाश संश्लेषण प्रभावित होता है और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। सल्फर का छिड़काव प्रभावी उपाय। किसानों को सलाह दी गई है कि रोग की रोकथाम के लिए किसान सल्फर 80% WDG का 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था रखें और अत्यधिक नाइट्रोजन उर्वरकों के प्रयोग से बचें। संक्रमित पत्तियों को तोड़कर नष्ट करना भी लाभकारी रहता है। भिंडी का गर्मियों में उत्पादन बढ़ने पर मंडियों में सामान्यतः 15 से 30 रुपए प्रति किलो भाव रहता है, जबकि बरसात या ऑफ सीजन में यही भाव 40 से 60 रुपए प्रति किलो तक पहुंच जाता है। गुणवत्ता वाली कोमल भिंडी को अधिक कीमत मिलती है। 40 से 60 दिन में शुरू हो जाती है तुड़ाई। 40 से 60 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है। एक बार बुवाई के बाद लगातार कई सप्ताह तक उत्पादन मिलता है। स्थानीय बाजार में हमेशा मांग बनी रहती है। गेहूं धान चक्र से बाहर निकलने के लिए यह एक बेहतर वैकल्पिक फसल मानी जाती है। मूंगफली की बिजाई का सही समय। मूंगफली की बिजाई का सही समय जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरी कर लें। मूंगफली की बिजाई जून के अंतिम सप्ताह से शुरू कर देनी चाहिए और जुलाई के प्रथम सप्ताह तक पूरी कर लें। इसकी उन्नत गुच्छेदार किस्मों में MH4 व पंजाब मूंगफली नंबर 1 बोने की सिफारिश की जाती है। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर B.R. काम्बोज ने बताया कि बुवाई कतार से कतार का फासला 30 सेंटीमीटर रखकर करनी चाहिए। कतारों में बुवाई इस प्रकार करें कि बीज 15 सेंटीमीटर के फासले पर पड़े। मूंगफली में जिप्सम का प्रयोग है लाभदायक। मूंगफली की बेहतर पैदावार के लिए प्रति एकड़ बुवाई के समय 13 किलोग्राम यूरिया, 125 किलोग्राम सुपर फास्फेट, 16 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटैश और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट ड्रिल करें। जिप्सम का प्रयोग भी लाभकारी है। दीमक और सफेद लट से बचाव के लिए बीज उपचार अवश्य करें। जरूरत से ज्यादा कीटनाशक व खाद डालने से मर जाते हैं मिट्टी के मित्र। फसलों में जैविक खाद का प्रयोग बढ़ाएगा उत्पादन। आधुनिक कृषि में जब भी फसल उत्पादन बढ़ाने की बात होती है तो अमूमन हमारा ध्यान नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटैश युक्त एनपीके रसायनों पर जाता है। मिट्टी का अपना माइक्रोबायोम यानी सूक्ष्म जीव संसार हो रहा है। ऐसे में यदि ये पूरी तरह से नष्ट हो गया तो करोड़ों रुपए की खाद भी फसलों को जीवन नहीं दे पाएगी। उत्पादन क्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। वरिष्ठ जिला विस्तार विशेषज्ञ डॉक्टर किरण करनाल के अनुसार रसायनों के अत्यधिक प्रयोग से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो रही है। अंधाधुंध रासायनिक खादों और कीटनाशकों के प्रयोग से मिट्टी का जैविक ताना बाना पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। जब हम जरूरत से ज्यादा यूरिया या कीटनाशक डालते हैं तो मिट्टी के मित्र बैक्टीरिया और कवक मर जाते हैं। परिणाम स्वरूप मिट्टी ऊपरी तौर पर तो मौजूद रहती है लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह कोमा की स्थिति में पहुंच जाती है। ऐसी स्थिति में पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है और फसलों पर कीटों का हमला बढ़ जाता है। किसान पारंपरिक सोच से आगे बढ़कर सॉइल बायोलॉजी को समझे और जरूरी वैज्ञानिक तरीके अपनाएं। मिट्टी में जैविक कार्बन को बढ़ाना जरूरी। क्रॉप रोटेशन का वैज्ञानिक आधार। मिट्टी में कार्बन का स्तर कम से कम 0.5 से 0.75% होना जरूरी है। इसके लिए ढेंचा मूंग जैसी हरी खाद किंचवा खाद और फसल अवशेषों को खेत में ही गलाएं। कार्बन मिट्टी के लाभकारी सूक्ष्म जीवों का मुख्य भोजन है। लगातार एक ही फसल उगाने से मिट्टी का माइक्रोबायोम असंतुलित हो जाता है, इसलिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। दलहनी फसलों की जड़ें राइजोबियम बैक्टीरिया को आकर्षित करती हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को अधिक उपजाऊ बनाते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स का रुख PSB और एजोटोबैक्टर जैसे जैव उर्वरक मिट्टी के लाभकारी बैक्टीरिया को पुनर्जीवित करने में मदद करते हैं। पौधों को मिलेगा सुलभ भोजन। स्वस्थ मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म जीव जटिल पोषक तत्वों को पौधों के लिए आसानी से उपलब्ध भोजन में बदलते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि और उत्पादन बेहतर होता है। बेलों के नीचे घास फूस या फसल अवशेष बिछाएं, होगा गर्मी से बचाव। 30% तक नुकसान घटाने में रहेगी मददगार। बढ़ती गर्मी बेल वाली सब्जियों की खेती के लिए चुनौती बन रही है। मई जून में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने पर लौकी तरबूज खरबूज खीरा तोरई करेला और कद्दू जैसी फसलों की बढ़वार प्रभावित होने लगती है। बागवानी विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे समय में अंतराल पर सिंचाई इंटरवल इरिगेशन तकनीक फसलों को गर्मी से बचाने में कारगर साबित हो रही है। इस तकनीक में मिनी स्प्रिंकलर के माध्यम से नियमित अंतराल पर हल्की सिंचाई की जाती है, जिससे मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। इससे पौधों की जड़ें स्वस्थ रहती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मल्चिंग भी उतनी ही लाभकारी है। बेलों के नीचे घास फूस या फसली अवशेष बिछाने से मिट्टी की नमी लंबे समय तक बनी रहती है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। बागवानी विकास अधिकारी डॉक्टर राधेश्याम खैरवा ने किसानों को सुबह या शाम सिंचाई करने की सलाह दी है। यह है इंटरवल इरिगेशन। इस तकनीक को रुक रुक कर सिंचाई करना भी कहा जाता है, जहां खेतों को लगातार पानी देने के बजाय निश्चित समय के अंतराल पर पानी दिया जाता है। ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर से 7056413010। तो मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 MHz Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला कैंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
3: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
4: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 MHz पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 705641310 705641310 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
3: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।
4: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
5: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: एक ही दालच में, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ ढाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए।

تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتَسطا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो, आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो, आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अम्बाला केंट से हमारी ये प्रसारण सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाइन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: जी, हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस कि अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक से, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, इससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं, तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं, वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा, उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है। और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रफ इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर प्लेटलेट्स डिपॉजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम्स नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है,
0: जी,
1: क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रेस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर होता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल्स में एनुरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें, और डेली एक्सरसाइज करें 4-6 किलोमीटर प्रतिदिन, एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोमनिया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सबसे एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और पैरालिसिस डिजीज, सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आर डी सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। आठवीं सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वाइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्ही मीनारों को देख कर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति। पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने
ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय

व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोबिंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अंबाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अंबाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजन को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग, पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

0: Acum mi-a legul, măzuri, mi-a măzuri. Mi-a mai mi-a legul. Ascultă, mi-a ascultă să am cot, aș bătau, aș către chiar cu drumul.
1: Catch the rain. बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मिला दियो 7056413010 पा फोन।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विदस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला कैंट से हमारी प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।
3: बधाई हो ताऊ, अपना मनोज 12वीं में अच्छे नंबर से पास हो गया।
4: वाह बेटा, नाम रोशन कर दिया गांव का।
3: बस आप लोगों का आशीर्वाद है।
4: अब आगे क्या करने का सोचा है?
3: आगे का तो अभी फिलहाल,
4: रे अब उसे हरियाणा की किसी ITI में दाखिला दिला दे, ताकि वक्त रहते अपने हुनर को सवारे और जीवन में आगे बढ़ सके। प्रदेश के युवा राज्य की 197 सरकारी व 180 प्राइवेट ITI में 1 या 2 साल के कोर्सों में एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें कुल 93 ट्रेड्स में 80,000 से ज्यादा सीटें हैं।
5: अधिक जानकारी हेतु www.itiharyana.gov.in पर लॉगिन करें अथवा निकटतम ITI में संपर्क करें।
6: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम, एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगे RJ किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन भारत सोपोरी का।
7: नमस्कार, सुस्वागतम, आप सुन रहे हैं सरगम का नया अंक। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, आपका स्वागत करती हूं इस खास प्रोग्राम में। आज के इस बेहतरीन सफर में हम आपको ले चलेंगे पुराने गानों की याद में। कार्यक्रम की पहली पेशकश है फिल्म सहरा के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और जिसके बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और म्यूजिक दिया है रामलाल ने।

लीजिए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गीत, जिसे संगीत दिया है रोशन ने और फिल्म ताजमहल से।

लीजिए अब सुनते हैं रवि का संगीतबद्ध गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म दो कलिया से, और उसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने।

0: अब पेश है फिल्म तलाश का गाना, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके बोल लिखे हैं मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक दिया है SD बर्मन ने।
1: पलकों के पीछे से क्या तुमने कह डाला, फिर से तो फरमाना।

0: चला फिर से तो फरमाना।
1: अगले गाने के बोल लिखे हैं राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म इंतकाम से।

लीजिए आप सुनते हैं जाने अनजाने फिल्म का गाना, गुलशन बावरा का लिखा हुआ, संगीतकार शंकर जयकिशन और आवाजें दी है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है रविंदर जैन, राजकवि और इंद्रजीत सिंह का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने फिल्म चोर मचाए शोर से, जिसको संगीत से सजाया है रविंदर जैन ने।

अगली पेशकश है साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ गाना, जिसके संगीतकार है खयाम और जिसे गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने फिल्म कभी कभी से।

अब पेश है फिल्म जमाने को दिखाना है का गाना, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है मजरू सुल्तानपुरी और अपनी आवाज से सजाया है शैलेंद्र सिंह ने।

विजय या पेश है किशोर कुमार का गाया हुआ गाना, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने और उसका संगीत दिया है खयाम ने, फिल्म कभी कभी से।

अगला गाना है मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज में, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार है वर्मा मलिक, फिल्म जानी दुश्मन से।

अब आपको सुनाते हैं फिल्म बैरा का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने फिल्म बैराग से।

0: किसके करता हूँ आशिक मेरा नाम है
1: आशिक
0: इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है ऐश करना मेरी जान मेरा काम है
1: ऐसी भी हो तुम

0: सभी श्रोताओं के नजर आज के कार्यक्रम का आखिरी गीत, जिसके बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, जिसे संगीत दिया है रवि ने, गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, फिल्म एक महल हो सपनों का। इसके साथ ही दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: एक महल हो सपनों

आप सुन रहे थे कार्यक्रम सरगम एपिसोड 8। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया आरजे किडनी ने, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने और निर्देशन था भारत सोपोरी का। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।

मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

धीरे ये सारे मौसम बदलते रहे, पर तुम्हारे लौटने के इंतजार का मौसम अभी लुप्त हो चुका है और दरियाओं की रवानी थम चुकी है। अब के सावन में बर्फ पिघलते ही शायद तुम लौट आओ, मेरे पतझड़ की वीरानी को दूर करने के लिए। मोहब्बत अब बेजुबां है, खामोश साहिलों में पानी की तरह है।

और आज की शब ये सितारे बिना चांद के तन्हाई महसूस कर रहे हैं।

कि इस शब की खामोशी को चीरती हुई तुम्हारी दर्द भरी आवाज मुझे तुम्हारे पास पास होने का एहसास कराता है। पर क्या तुम हो मेरे हमनवा हमराज? शायद इस बात का अंदाजा लगाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि तुम अक्सर गुम हो जाते हो मेरी तन्हाइयों को चीर कर, और इस खाली शब के इन अंधेरे

रहा हमारा अधूरा। शायद कुछ उलझने पड़ी है सरी रहा जो थाम लेती है दामन बेवजह। बेवजह क्यों यह सूरज मेरे सफर में मेरा साथ छोड़ देता है और मैं परछाइयों के हमराह अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ता हूं यह सोचकर कि शायद मेरा यह अधूरा सफर मंजिल के साथ साथ मुझे मेरी खोई हुई पहचान वापस दिला सके।

दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे आपसे इजाजत। इजाजत, नमस्ते।

आप सुन रहे थे रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और आज के प्रसारण की संचालिका कृष्णा। अब चाहूंगी आपसे विदा। कल सुबह ठीक 5:58 पर हम आपसे फिर मिलेंगे नई ऊर्जा, नई उमंग और ढेर सारी मीठी बातों के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और रेडियो विदस्ता सुनते रहें। शुभ रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम।